सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 23वीं तिथि।

थी। तदनुसार 14 अगस्त 2026, इस समय प्रातः के 5:58 और 37 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। मंगल कामना के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
2: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी।

0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे, इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जिसका मन ईश्वर में रम जाए, फिर संसार की कोई भी शक्ति उसे अपने विचार बदलने पर विवश नहीं कर सकती। जिसने स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया, उसे किसी का क्या भय हो सकता है।

एक भगवान को याद करने मात्र से सभी कार्य ठीक होने लगते हैं। लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं, परंतु भोगों को याद करने से शरीर में विकार पैदा होते हैं, मन और स्वास्थ्य दोनों बिगड़ते हैं। इसलिए हमेशा भगवान को याद करो, यही जीवन का सार है।

वंदना कार्यक्रम की इन भक्ति रचनाओं में आज आपने जो आवाजें सुनी वो थी हरिओम शरण, वाणी जयराम, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद रफी की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देशगान।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय है दया धर्म। आलेख श्री कैलाश चंद्र भाटिया का है, वाचन है पुष्पा शर्मा का।
1: मानव का विशिष्ट गुण दया है। भारतीय संस्कृति के अनेक प्राचीन ग्रंथों में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्राणी मात्र पर दया करना ही धर्म है। दया भाव के महत्व का प्रतिपादन अपने ग्रंथ रामायण तथा महाभारत में भी किया गया है। दया का विपरीत भाव ही निर्दय से प्रकट होता है। निर्दय बन जाने की प्रक्रिया ही निर्दयता है। बिना रहम दिखाए किसी भी व्यक्ति को निष्ठुर होकर कष्ट देना ही निर्दयता है। निर्दयता का अतिरेक ही क्रूरता है। उग्रता के साथ निर्दयता के मेल से क्रूरता का भाव प्रकट होता है। फक्कड़ कबीर साहब ने तो प्राणी मात्र को ईश्वर का अंश माना है, फिर किस पर दयालु और किस पर निर्दयी हो। दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर पोए। इसमें दो राय नहीं है कि दयालु होना अच्छा है और निर्दयी होना बुरा है, पर किन्हीं परिस्थितियों में निर्दयता आवश्यक हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस जैसे संत ने भी राय दी थी कि जब तब जहां तहां जिस तिस पर दया नहीं करनी चाहिए। दया दिखाने की भी एक सीमा होती है। देश काल पात्र के अनुसार ही दया दिखानी चाहिए। बुरे व्यक्तियों पर दया करना दिखना भलों पर अत्याचार है। सामान्यतया बच्चों को दया भाव की शिक्षा दी जाती है और निर्दयता की छाया से भी दूर रखा जाता है, पर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि युद्ध भूमि में शत्रु पर निर्दयता से आक्रमण किया जाता है, शत्रु पर दया भाव नहीं दिखाया जाता, वरन उसे तो ऐसे प्रहारों से नष्ट कर देना चाहिए जैसे घड़े को पत्थर पर पटक कर फोड़ दिया जाता है। अगर हत्यारों को क्षमा करेंगे तो प्रकारांतर से दया की हत्या हो जाएगी। परिस्थिति के अनुसार दयालु या निर्दयी होना जरूरी है। फिर भी सज्जन पुरुषों के लिए दया करना दयालु होना ही महान धर्म है और यही भारतीय संस्कृति का मूल संदेश है, जिसको महात्मा बुद्ध ने सबको दिया और सम्राट अशोक ने विश्व भर में प्रचारित किया।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय था दया धर्म। आलेख था श्री कैलाश चंद्र भाटिया का, वाचन स्वर था पुष्पा शर्मा का।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है रविंद्र साठे और साथियों का, संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री राम की बारात के स्वागत में तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांच वाद्य यंत्रों से वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान, साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने को मिले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर था रविंद्र साठे और साथियों का, संगीत था सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय होगा मेथी की खेती। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गाने आपको सुनवाएंगे सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में।

सुबह 7:31 पर कार्यक्रम होगा ब्रज माधुरी, जिसमें आज आप सुनेंगे रासलीला माखन चोरी। लेखक होंगे स्वामी फतेह कृष्ण शर्मा, प्रस्तुति होगी नरेश मल्होत्रा की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि सुनेगा सुबह 8:30 पर। 9 बजे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी, विषय होगा टाइफाइड कारण लक्षण और निदान। वार्ताकार होंगे डॉक्टर बाके बिहारी गर्ग और इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर, विषय होगा जल संरक्षण के उपाय। आलेख और वाचन होगा विष्णु प्रकाश शर्मा का। गांधी चर्चा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। विशेष वार्ता हमारा गौरव राष्ट्रीय ध्वज, वार्ताकार होंगे खड़ग सिंह छोकर और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:45 पर। 10 बजे से सुनिएगा फिल्म संगीत। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आपके लिए प्रसारित होगा पूर्वाहन 11 बजे, प्रस्तुति होगी संजय सारस्वत की। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण सुनिएगा 11:30 पर। मध्याह्न 12 बजे गीत बात और SMS, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे।

12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं संपत लाल जोशी, वनिता लोक। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा 1:15 पर, जिसमें आज चर्चा के विषय होंगे हर घर तिरंगा, दूसरा विषय होगा खुदी राम बोस बलिदान दिवस, साथ ही सुनिएगा वार्ता भगवान शिव का प्रिय मास श्रावण मास। वार्ताकार होंगे विष्णु प्रिया शर्मा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय 12:30 पर।

शाम 5:10 पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का सशस्त्र बलों के लिए विशेष संदेश का सीधा प्रसारण होगा। 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में बातें होंगी, सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास, और साथ में वार्ता सुनिएगा भारतीय अस्मिता का प्रतीक तिरंगा ध्वज। वार्ता करूंगी वीना शर्मा।

शाम 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में काव्य पाठ सुनिएगा। कवि होंगे अनिल कुमार शर्मा। संध्या वंदन कार्यक्रम शाम 6:30 पर। 7 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। शाम सुहानी कार्यक्रम शाम 7:31 पर।

संसद समीक्षा रात 8 बजे 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा नवरंग। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात 9:15 पर और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण होगा।

0: ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें, विषय है मेथी की खेती। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, आज हम मेथी की खेती के संदर्भ में बात आपसे करेंगे। मेथी दो प्रकार की होती है, एक साधारण मेथी तथा दूसरी चंपा यानी कि कसूरी मेथी। साधारण मेथी किसान भाई अधिक बुवाई करते हैं और अपने उत्तर भारत में इसकी पैदावार भी अधिक और अच्छी मिलती है। कसूरी मेथी ठंडे क्षेत्र में उगाने के लिए अधिक उपयोगी है। साधारण मेथी जल्दी बढ़ती है और इसकी शाखाएं भी सीधे ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, जबकि कसूरी मेथी धीमी गति से बढ़ने वाली नारंगी पीले फूल वाली फसल है। साधारणतः मेथी में पूसा अर्ली बंचिंग नामक जाति विशेष उपयुक्त है और कसूरी मेथी में कसूरी सेलेक्शन नामक जाति अपना प्रमुख स्थान रखती है। मेथी यद्यपि हर प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती है, परंतु दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास का अच्छा प्रबंध हो, कार्बनिक पदार्थ की अच्छी मात्रा हो, मेथी उगाने के लिए अच्छी मानी जाती है। मेथी की बुवाई से पूर्व खेत को एक या दो बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके शेष तीन चार जुताइयां देसी हल से या ट्रैक्टर द्वारा कल्टीवेटर से करके मिट्टी को महीन बना लिया जाता है तथा पाटा आदि दे करके समतल कर लेते हैं। सिंचाई की दृष्टि से सुविधा अनुसार उसमें जो भी आकार आपके लिए सुविधा अनुसार रहे उसको बना लिया जाता है। खेत की तैयारी के समय खेत में 100 से 120 क्विंटल अच्छी तरह से सड़ी गोबर की खाद, 2 क्विंटल सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाना चाहिए। पहली कटाई के पश्चात टॉप ड्रेसिंग के रूप में 40 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से लगाने से पौधों और पत्तियों की बढ़वार अच्छी होती है। प्रयोगों द्वारा ये

0: सिद्ध हुआ है कि नाइट्रोजन की जो भी इसकी निर्धारित मात्रा है, देने से पत्तियों में रसीलापन भी बढ़ता है। देसी मेथी की बुवाई का अब उचित समय है और इसे आप किसान भाई कर सकते हैं। वैसे सालों भर पालक की बुवाई की जा मेथी की बुवाई की जाती है, लेकिन इसकी बुवाई 15 नवंबर तक आप किसान भाइयों को अवश्य कर लेनी चाहिए। बीज को उपयुक्त आकार की बनी हुई क्यारियों में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में बोना चाहिए, क्योंकि बुवाई के समय खेत में अधिक खरपतवार निकलते हैं जो कि लाइनों में बोई गई फसल में खुरपी द्वारा आसानी से निकाई गुराई करने में सफलता मिलती है। निराई करने से भूमि में वायु का संचार भी बढ़ता है, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, जबकि बखेर कर बोई गई मेथी में निराई की विशेष असुविधा होती है और खर्चा भी अधिक आता है तथा निराई न होने से वायु का संचार भी नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप मेथी को सदैव लाइन में ही बोए जाने की सिफारिश की जाती है। मेथी में सिंचाई का भी विशेष महत्व है। सिंचाई से ही उचित बढ़वार संभव है, इसलिए लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल से इसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि सिंचाई देर से या लंबे समय बाद कर रहे हैं तो उसी अनुपात में हरी सब्जी की मात्रा भी घट जाती है। मेथी की बुवाई के लगभग 15 से 20 दिन के पश्चात 3-4 पत्तियां बन जाती हैं और ऐसी स्थिति में ही मेथी की पहली कटाई कर लेनी चाहिए, लेकिन कसूरी मेथी बुवाई के 20 से 25 दिन बाद ही पहली कटाई के लिए तैयार हो पाती है। आमतौर पर लगभग 15 दिन के अंतर से कटाई करते रहना चाहिए। देर से कटाई करने पर मेथी की पत्तियां कठोर, कड़वी और कम रसदार हो जाती हैं। मेथी आमतौर पर 6 से 7 कटाई सफलतापूर्वक दे देती है। पूसा अर्ली बंचिंग नामक जाति की हरी पत्तियों की पैदावार 80 से 90 कुंटल तथा कसूरी मेथी की पैदावार 90 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था मेथी की खेती। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।

आनंद भट्ट फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों की आवाजों में। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं देवदास फिल्म से, गाया है मन्ना डे और गीता दत्त ने।

पुराने फिल्मी गीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, बड़ी बहन फिल्म का। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हुस्नलाल भगत ने।

रोशन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को फिल्म ममता में। गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं चित्रलेखा फिल्म से, गाया है लता मंगेशकर ने।

लता मंगेशकर के गाये चित्रलेखा फिल्म के इस गाने के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा यह अभियान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड, कल से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का

0: प्रसारण करेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। कानपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा अभियान घर घर पहुंच रहा है। मैं प्रदेशवासियों से, कानपुर वासियों से अपील करता हूं, घर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर के अपने घर पर तिरंगा फहराएं और बिठोर के हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है, यहाँ से ऐसी शुरुआत करें कि अपना राष्ट्र प्रेम, अपना राष्ट्र प्रथम की भावना से हम घर घर जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश को नंबर एक पर ले जाने का काम करेंगे।
0: प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अभियान के तहत कल कानपुर देहात जिले में एक विशाल तिरंगा यात्रा की अगुवाई की।
2: कानपुर देहात के अकबरपुर इंटर कॉलेज से शुरू हुई इस यात्रा में स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने लगभग 1200 फीट लंबे तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। अयोध्या में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्यसभा सदस्य और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं बस्ती जिले में वहां की जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में भदोही जिले में भी राजेंद्र बर्नवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज से हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: बाराबंकी में जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राही तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बिजनौर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकली। वहीं प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बहराइच में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वन विभाग की तरफ से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कल प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वंदे मातरम वाटिका स्थापित की जाएगी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दीपक कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान में नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी।
3: प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम वाटिका में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी सितांशु पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां एक अशोक चक्र बनाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कल से सभी अर्चक एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। मंदिर से जुड़े धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि समिति ने अर्चकों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है।
4: नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत्र वस्त्र धारण करेंगे। गर्मी के मौसम में नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय वस्त्र होगा। खास बात यह है कि यह वस्त्र सिला हुआ नहीं होगा, बल्कि बिना सिला हुआ रेशमी सिल्क का होगा। वहीं शरद ऋतु में मौसम के अनुसार गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। उस दौरान ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल होगा, लेकिन वस्त्र का रंग पीत ही रहेगा। समिति का मानना है कि इस बदलाव से मंदिर की पूजा व्यवस्था में एकरूपता तथा अनुशासन और मजबूत होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: संसद का मानसून सत्र कल संपन्न हो गया। इससे पहले संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए।
5: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए।

0: इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में 34,947 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। गोरखपुर की जिला स्वास्थ्य समिति डीएचएस ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक बार फिर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यह जानकारी गोरखपुर के सीएमओ डॉ. राजेश झा ने दी। उन्होंने बताया कि समिति वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी प्रदेश में अव्वल रही है।
2: हम लोग के डीएचएस को इस बार 2025-26 में भी रैंक वन मिला है और ये रैंक वन मिलना जो है वो अपने आप में बड़ी चीज मानी जाती है। इसका मतलब जो हम लोग अपना जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक करते हैं वो बैठक हम लोग सही तरीके से करते हैं।
1: प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। इससे कई जिलों में कल मध्यम से लेकर तेज बारिश हुई। गोरखपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चंदौली जिले के एसआरवीएस महिला महाविद्यालय में कल भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी वाराणसी की इकाई द्वारा मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल ने किया। इसमें मीडिया और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करने, फेक न्यूज एवं भ्रामक सूचनाओं की पहचान, फैक्ट चेकिंग और डिजिटल टूल्स के प्रभावी उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पीआईबी के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा यह अभियान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड, कल से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

भैया यह कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं रासलीला माखन चोरी। लेखक हैं स्वामी फतेह कृष्ण शर्मा, प्रस्तुति है नरेश मल्होत्रा की।

0: हे सुदेवी जी, हे विशाखा जी, प्यारे श्याम सुंदर हमारे तुम्हारे घरंसु माखन मिश्री की चोरी करके ले जाए।
1: हाँ साची कह रही है सखी।
2: हाँ सखी,
0: पर सखियो तुम में सो कोई ऐसी चतुर सखी है जो उनको पकड़ के और बांध के हमको दिखावे।
1: हाँ सखी, श्याम सुंदर को पकड़ के मैं दिखाए सकूं हूँ।
3: सखी कैसे पकड़ेगी उनको?
1: अरे सखी, मैं अपने घर में कोरे कोरे माट मटकान में दही दूध माखन मिश्री धर दूंगी सजाए के। जब वे आमेंगे ना चोरी करवे, झट उनको पकड़ लूंगी और तुम देख लीजो।
0: तो ठीक है सखी, हम अपने घर को जा रही हैं, तू पकड़ के राखियो उनको।
1: अरे ना ना ना, अभी मत जाओ, अभी उनको कीर्तन तो कराए के जाओ। जब हम कीर्तन करेंगी तभी तो वे यहाँ चोरी करवे आवेंगे।
3: करो सखियो।

0: सखी अब हम अपने घर को जा रही हैं।
1: अरे सखियो तुम जाओ और संजा को आ जाइयो, श्याम सुंदर यहाँ बधे मिलेंगे।
0: ठीक है सखी,
1: जाओ जाओ जाओ। हाँ मैं अब जल्दी सो, श्याम सुंदर के ताई सुंदर सुंदर

सुंदर के ताई सुंदर सुंदर मटकान में दही दूध जमाए के धर दूं, आमेंगी देखेंगे माखन नहीं मिलेगा तो लौट जाएंगे। हाँ मैं एक काम और करूं, छिप जाऊं कहूं, जब वे आमेंगे मोकू देखेंगे तो भीतर नहीं पधारेंगे, मैं छिप जाऊं।

कितने सुंदर दर्शन है रहे हैं। श्याम सुंदर तो बड़ी पक्की चोर चाल सो आए रहे। आहा कितनी सुंदर छटा है इनकी, जबई तो सब ब्रज में कहे हैं गो।

गज के रसिया जो ठेरे जबई तो माखन के लोभ में देखो तो आहा कितने सुंदर लग रहे। अरे मेरो तो अभी सो मन इनके प्रति इतनो आकर्षित है रहे है, मैं कैसे पकड़ूंगी। हाँ जब ये माखन मिश्री खामेंगे, जब इनके वहाँ सुंदर रूप के दर्शन करूंगी, तब इनको पकड़ूंगी। कैसे मलूक लग रहे हैं मेरे बाल कृष्ण।

पकड़ लिए श्याम सुंदर पकड़ लिए। अजी अब तुम कहां जाओगे भाज, चोरी करत फिरत नित घर घर, तुम्हें तनक न आवत लाज। अजी बांधूंगी मैं हाथ तिहारे, भले मिले हो आज, नारायण निज भवन होएगो नंद मेहर को राज। अजी तुम्हारो राज तो तुम्हारे नंद बाबा के यहाँ है, अब कहाँ जाएगो रे।

0: चोरी करी है, माखन मिश्री खायो है और तुमने मेरो घर जाने कोई बात ना है, पर जी माखन में हाथ चो है रहे।
1: अरे सखी देख, मैं तेरे पाम पूजू, तेरी पैया परू, तेरी नाक रिगड़ू, तुमो को आज छोड़ दे, फिर मैं तेरे घर में कबहु चोरी कर भी ना आऊंगा।
0: अजी मेरे यहाँ ना आओगे तो और सकीन के घर में तो जाओगे।
1: और काउ सकीन के घर को तेने ठीक ले रखो है।
0: अरे नेक्सी से तुम तो देखवे में नेक्सी से लगो, बड़ी लंबी लंबी बात करो, चुपचाप हाथ आगे करो, बात होंगी।
1: अरे सखी तू ना माने तो मैं तो को नाच गाय के दिखाए दूं, जब तो छोड़ देगी।
0: हाँ तुम नाच के दिखाओगे, अच्छा तुम नाच के दिखाए दो, फिर मैं सोचूंगी तुम्हें छोड़ू कि ना छोड़ू, नाच के दिखाए दो।

0: चोर महाराज कहाँ जाओगे, बांधूंगी तुम्हारे दोनों हाथन में।
1: कहाँ कही सखी, ये तेरा घर है।
0: हाँ जी मेरो घर ना है तो का तुम्हारे बाबा को घर है।
1: अरे सखी आज तो मोती चूक पर गई।
0: चूक पर गई?
1: हाँ।
0: कहाँ भयो?
1: अरे सखी।

0: अजी कहाँ जा रहे हो?
1: कहाँ जा रहे हो?
2: अपने घर को जा रहे।
1: अजी तुम्हारो नाचवो गायबो मोकू तो नेकू चोखो ना लगियो।
2: का कही सकी तुको हमारो नाचवो नेकू अच्छो ना लगियो?
1: नेकू चोखो ना लगियो।
2: पता है नाचवे में कितनो जोर पड़े?
1: कितनो जोर पड़े?
2: चोटी को पसीना एड़ी पे आ जाए इतनो जोर पड़े।
1: अजी तुम्हें पता माखन निकासे में कितनो जोर पड़े? तीन जगह ते कमर टेढ़ी करनी पड़े। अपनी मैया पूछियो और झट्टी वाय खा जाओ बंदरन को बांट दियो ने कुछ जोर थोड़ी पड़े तुम पे।
2: अरे सखी तुमको मेरे मुखार बिंदे ने देख के ने कुछ दया ना आवे।
1: अजी कहा बताऊं श्याम सुंदर आपको जो मुखार बिंद ने इतनो मलूक है यह देख के तो बड़ी दया आवे बड़ी दया आवे। पर जब तुम अवगुण करो हो ना जब ऐसी दिशा आवे कहा बताऊं जब तो पानी में वो आग लग जाए।
2: तो सखी तुम हमारे मुखार बिंद ये देखी करो यदि करतू तो नहीं देखोगी ना तो पानी में आग लगेगी ना।
1: अजीब बात ने मत बना जल्दी में अपने हाथ ने लो कहां तुम्हारे हाथ ले
2: बोले बांधेगी
1: और का बांधेगी।
3: मन मूसो मुस्काए के दीनी भुजा पसार
1: अरे
3: लाल लाल सुपल्लवन लखे बाल
1: रेशम की डोरी माखन में हाथ है रे रेशम की डोरी झट्टी फिसल जाए कैसे बांधूं कैसे कहां करूं।

0: बात वो को नहावे कहा बताऊं सब आवयो पर तुम्हारे मुखार बिंदे देख के सब भूली सी है रही हूं कहा बात हूं
1: तो फिर बांध ले ना
0: अजी कैसे बात हूं कहा बताऊं रेशम की डोरी माखन में हाथ तेरे झट ही फिसल जाए
1: वाह सखी वाह नाच ना जाने आंगन टेढ़ो एक तो तू पे बांध वो आवे ना है और या रेशम की डोरी को और मेरी या कोमल कोमल

0: लगा रही होगी।
1: अजी अब बताओ कहाँ करूँ।
0: देख सखी, तू कौवा गुरु बना, जा वापस से बांध बसी की और जा हमें बांध दिया।
1: अजी ये तो बहुत लंबी बात कह दी, पहले कहो गुरु वे ढूंढू, फिर वाय बनाऊ, फिर सीखूं। अब ऐसा करो आप ही सिखा दो ना।
0: सखी मुँह पे तो बहुत जोर से बांध वो आवे।
1: बहुत जोरन ते आवे?
0: हाँ।
1: अजी मनमोहन तुम्हें ही मेरे गुरु हो, तुम्हें ही मुँह सिखा दो।
0: अच्छो सखी तू लो लंबे हाथ कर।
1: लंबे हाथ तो कर दू पर मुँह ऐसो मत करियो को बांध के चले जाओ।
0: ना सखी तू बांध वे की तो खोलवे की तो चिंता ही मत करियो, मैं बिना कहे खोल दूंगा।
1: अच्छा लो बांध दियो।
2: मनमोहन करी दियो
0: तो। लपेट।
1: हाँ जी।
0: सखी दो लपेट।
1: हाँ जी।
0: सखी तीन लपेट।
1: अजी तीन तीन लपेट कर दे पर खोल दोगे ना।
0: तू खोलवे की तो चिंता ही मत करे, बिना कहे खोल दूंगा।
1: अच्छा लो बांध जल्दी से खा।
0: सखी एक गांठ।
1: अच्छा जी।
0: सखी दो गांठ।
1: हाँ। अजी दो दो गांठ लगाए देंगे, तीन तीन लपेट लगाए देंगे, अब तुम अब तो छोड़ दो, अब आएगो आएगो।
0: अब मुंह पे ना बांध रही जा।
1: अजय ना ना ऐसा मत करो, अजी गुरुजी ऐसा मत करो, बांध दो।
0: और सखी ऊपर ते ये गुर्र गांठ।
1: अच्छा कहाँ करूँ अब? अब मुंह पे बांधो आएगो, अब मुंह खोल दो, मैं यहाँ पे बांधूंगी।
0: अरे सखी तू यहाँ बंधी भाई कितनी सुंदर लग रही है, तू मुकू यहाँ बंदी भाई प्रातः काल दर्शन दे देकर मैं तो कृतार्थ है जाऊंगो।
1: अजी कृतार्थ है गए, मुँह पे आएगो बांध, खोलो मुकू खोलो जल्दी खोलो, मैं आपको बांधूंगी।
0: अरे सखी काके तू हमें बांधेगी, गुरु की विद्या गुरु पे ही चलानो चाहे।
1: अच्छा।
0: अरे हमने तो तू बांध वो सिखाया, तू हमें ये बांधेगी। और सखी मेरे गुरु ने तो मुझे बांध वो सिखायो है, खोल वो तो मैं उन्हें जानू।
1: अजी जी कहा कह रहे हो तुम, जी कहा है रहे हो, मुँह को पहले बांध दिया, अब कह रहे खोल बना, मुँह को जल्दी खोलो, मैं कहा करूँ, मेरी सास आ जाएगी और वो आ जाएंगे सब, मुँह को कहा कहेंगे कैसे करूँ मैं।
0: और सखी अब तो मैं ग्वाल वाले ने बुलाए कि तेरी हांसी करवाऊंगा।

0: कन्हैया राम राम।
1: क्यों चल रहे?
0: क्यों बुला रहे है?
1: चोरी करवे ना चल रहे।
0: चोरी करवे?
1: हाँ।
0: अरे चोरी तो हमने करी ना, हमारे बाप ने करी ना, तू बड़े मानस के बेटी बेटा ने चोरी करवो से कह रहे।
2: कन्हैया भैया तू यार चोरी है छोड़ दे, हम तेरे हाथ जोड़े।
3: हाँ भैया ये चोरी को काम नहीं, को अच्छो ना है, चोरी है छोड़ दे।
4: अरे

0: अरे दादा, अरे एक तो तू बड़े गोप को है, तू चोरी करे, अरे हमारी सबकी हंसी होए, बदनामी होए, नौलाह गैया तेरे यहाँ दूध दे हैं, और फिर तू ब्रज गोप पीर के यहाँ चोरी करवे जाए।
1: अरे भैया, तेरी बरसाने ते सगाई की चर्चा चल रही है।
0: अरे हम में युवा सत्य है,

0: अरे कन्हैया तेरी सगाई की चर्चा बरसाने ते चल रही है, यदि वहाँ वहाँ राजमहल में यह बात को सुनेंगे तो तेरी बदनामी होगी, सगाई की चर्चा जो सब समाप्त है जाएगी, तेरी कोई सगाई ना करेगा।
1: हाँ भैया, कन्हैया तू यह चोरी को छोड़ दे, हम तेरे हाथ जोड़े भैया।

0: सुन के तू रोवे क्यों लगे भाई?
1: अरे चुप रह जा।
0: अरे दादा बता बता
2: भैया। हाँ। मैं यहाँ मारे रो रहा हूँ। हाँ। कि माखन मिश्री की चोरी मुँह पे ना छूटे।
1: हाँ कन्हैया तुमको मत छोड़े एक बार और हम ना छोड़े हजार बार।

0: पकड़ लिए। अजी अब तुम गांव अक्की जाओगे, अब तो मैं तुमको पकड़ के तुम्हारी मैया के पास ले जाऊंगी।
1: हाँ सखी, तू इनको मैया के पास ले जा। देख मोकू तो इन्हें उल्टे बांध के अठाड़ो कर रखे हो, तू जा सखी इनको ले जा मैया की डोरी।
0: चलो जी।
2: अरे सखी देख, तू मोकू मैया के पास मत ले जाए, मैया मोकू मारेगी।
0: अजी तुमको पिटवे को डर हो तो चोरी कर भी ना आते, अब देर मत करो, जल्दी चलो चलो
2: चल
0: चलो चलो
3: चलो।

0: मैया कौन है बेटी? मैया तुम नितप्रत कहो करें कि सखियों मोसों तुम्हारी काय बात की लड़ाई है, मेरे कन्हैया को तुम झूठो चोरी को नाम लगाओ हो।
1: कहा तुम्हारो बोसों
0: यशुदा। तो मैया आज मैं आपके लाला को पकड़ के लाई हूँ, मेरे घर चोरी करवे गए।
2: कहा मेरे कन्हैया को पकड़ के लाई है?
0: हाँ मैया।
2: कहा मेरो कन्हैया?
0: ये ठाड़े।
2: अरे कन्हैया,
3: मैया दंडोत।
2: अरे कन्हैया, तू बेटा या सखी के घर में चोरी करवे गयो?
3: मैया मैया सखी के घर में चोरी कर भी ना गयो।
2: झूठ बोल रहे हो ए? ये सखी कह रही है कि मेरे घर में चोरी कर भी गयो। हाँ, और तू ही पकड़ के लाई है। तू कह रहे हो कि चोरी कर भी ना गयो?
3: मैया मैं चोरी कर भी ना गयो, ये मुकु मारग में ते पकड़ लाई है।
2: तू झूठ बोल रहे हो, चोरी कर भी गए हो तू।
0: ये चोरी कर भी गए, ये झूठ बोल रहे हैं।

0: लेकर भी चली गई हो।
1: हाँ सखी, मेरा कन्हैया सवेरी गैया चराए भी जाए, फिर कब तेरी घर चोरी कर भी चले हो जाए।
2: भैया यहाँ से तो ये गैया चराए भी जाए, पर वहाँ ग्वाल वालन को गैयान पे छोड़ आमे और जब चोरी कर भी आमे।
1: हाँ ए, सुच चतुर है गयो है, ग्वाल वालन को गैयान पे छोड़ आवे, चोरी कर भी आवे, तू है क्यों गयो आके घर में।
3: ब्रज माधुरी कार्यक्रम में अभी आपने सुनी रासलीला माखन चोरी। लेखक थे स्वामी फतेह कृष्ण शर्मा, प्रस्तुति थी नरेश मल्होत्रा की। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित

0: किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में

0: उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
1: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन

0: टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल सातवीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी GST से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in Fire Services and Prison Department. Age limit relaxed. 7 workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under-construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Today is Partition Horrors Remembrance Day. The nation is paying homage to all of those who sacrificed their lives and suffered unimaginable pain during the partition in 1947. We have a report.
3: To mark the Partition Horrors Remembrance Day, various programs are being organized across the country, including in the national capital. In a fitting tribute to all those who lost their lives due to the partition of the nation and were displaced from their roots, in 2021, the government had decided to observe 14th August every year as the day to commemorate their sacrifice. It also ensures that future generations remember the pain and suffering endured

स्वदेश फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना एआर रहमान और साथियों की आवाज़ों में। बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी खुद एआर।

0: रहमान ने।
1: यूपी 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
2: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
1: यूपी 112 की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
2: शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ।
1: यूपी 112 नंबर एक, सेवाएं अनेक।
0: कार्यक्रम का ये अगला गीत परदेश फिल्म से।

0: परदेश फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साथियों की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी नदीम शवर्ण ने। फिल्म का नाम परदेश था। और एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को जारी रखेंगे।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

मधुशी और नरेश अय्यर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म का ये गीत। लिखा था प्रसून जोशी ने और धुन बनाई थी A.R. रहमान ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं संघर्ष फिल्म से, गाया है सोनू निगम ने।

संघर्ष फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोनू निगम की आवाज में। शब्द रचना थी समीर की और संगीत रचना थी जतिन ललित की। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कलंक फिल्म से।

कलंक फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में। धुन बनाई थी प्रीतम ने और बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से. सुबह के 9 बजने वाले हैं और आइए अब आपको स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवाते हैं भेंट वार्ता. विषय है टाइफाइड, कारण, लक्षण और निदान. वार्ताकार हैं डॉक्टर बांके बिहारी गर्ग. इनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह.
4: स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार. श्रोताओं, जब भी बरसात आती है तो बीमारियों के होने के जो चांस हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में जल भराव होता है, आसपास पानी भर जाता है, मक्खी मच्छर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे देखने में आता है कि बीमारियों का जो प्रकोप है हमारे आसपास काफ़ी बढ़ जाता है. लेकिन आजकल टाइफॉइड की भी समस्या काफ़ी देखने में आ रही है. हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जब हम उसकी जांच कराते हैं ब्लड की तो उसमें टाइफाइड निकल रहा है. तो इस समय क्यों कर टाइफाइड हो रहा है, क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या सिम्टम हैं, लक्षण इसके, और क्या इसका निदान हो सकता है, कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे इसका इलाज हम करा सकते हैं, ये चार पांच चीज़ें हैं जिसकी जानकारी के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर वीवी गर्ग साहब, शहर के वरिष्ठ फिजिशियन है. डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत. नमस्कार.
5: बहुत बहुत शुक्रिया सिंह सर.
4: मैं बात कर रहा था अपने श्रोताओं से, टाइफाइड तो बड़ा कॉमन सा हो रहा है, इसको क्या हम पुराने समय में जो लोग म्यादी बुखार बोलते थे ये कह सकते?
5: बिल्कुल बिल्कुल, पहले से म्यादी बुखार बोलते थे या मोती झरा नाम से भी जाना जाता था. तो पहले म्यादी बुखार क्योंकि ये लंबे समय चलता है, 3-4 हफ्ते तक चलता है और इसका एक सेट पैटर्न होता है. तो इसे हम लोग जो है म्यादी बुखार भी बोलते हैं, मोती झला भी बोलते हैं, टाइफाइड भी बोलते हैं, एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं.
4: ओके.
5: एंट्रिक फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके आंतों पे सबसे ज़्यादा असर होता है इसका, इसलिए इसे एंट्रिक फीवर भी हमारी भाषा में बोलते हैं. तो ये बेसिकली देखा जाए तो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं. एक दूसरा बैक्टीरिया और होता है जिसे साल्मोनेला पैराटाइफी कहते हैं. तो पैराटाइफी वाले बैक्टीरिया से तो कम, लेकिन टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफी से ज्यादा.
4: तो उसी से टाइफाइड पड़ा,
5: उसी से टाइफाइड.
4: तो जैसे लोग, पुराने लोग इसको जैसे आपने कहा मोती जला है या म्यादी बुखार है, तो उस समय के लोगों के सिम्टम कुछ अलग पहचान लेते थे कि हाँ ये है. लेकिन अगर आज के संदर्भ में, क्योंकि नई पीढ़ी भी अब आ गई है और इतना वो नहीं है, वो बुखार को बुखार मान के चली, तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो पहली दिखाई देते हैं इसमें?
5: सबसे पहले तो बुखार आना.
4: बुखार आएगा, ठीक है.
5: पहले के समय में जो लोग पहचान लेते थे म्यादी बुखार ये, तो वो इसका एक सेट पैटर्न है कि डे बाय डे इसका एक ये स्टेप लैडर पैटर्न.

0: इतने बजे आएगा,
1: एक स्टेप और इतना हो या हर बार बढ़ के आएगा,
0: बढ़ के आएगा तो या इतने इंटरवल पे आएगा और उतर जाएगा। जी
1: पहले इसका एक सेट पैटर्न था, पर हम आज की बात करें तो आजकल बुखार आया नहीं कि लोग अपने आप ही दवा ले लेते हैं, आयुर्वेदिक ले लेते हैं, होम्योपैथी ले लेते हैं, बुखार की दवा ले लेते हैं, बहुत से लोग तो एंटीबायोटिक भी अपने आप ही शुरू कर देते हैं क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी
0: इजी है।
1: तो हम लोगों के पास जो पेशेंट्स यूजुअली हम लोग जो देखते हैं वो एक खराब स्थिति में देखते हैं, जो कि
0: बिगड़ के
1: हम लोगों के पास आते हैं क्योंकि वो कई एंटीबायोटिक खा के आते हैं कई, तो हमें फिर उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो सबसे पहला तो बुखार ही है, फिर उल्टी दस्त हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और सर दर्द हो रहा है, कमजोरी हो रही है, थकान हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि आंतों की परेशानी है,
0: आंतों
1: की परेशानी तो पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है, तो हल्का सा कफ भी हो
0: मतलब
1: सकता है,
0: आंतों पे आ रहा तो फिर भूख भी कम लगेगी, भूख
1: भी कम
0: कमजोरी आ ही जाएगी,
1: हाँ।
0: बाकी चीजें फिर वो
1: बढ़ती जाती हैं। कई बार उसमें रोज स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसे जिसका नाम मोती जला कहते थे, तो हल्के से रोज कलर के स्पॉट्स आ जाते शरीर पे, रैशेज आ जाते हैं,
0: वो दिखाई देने लगते थे,
1: तो वो दिखाई देने लगते थे तो उसे लोग मोती जला बोल देते थे
0: कि ये मोती दिख रही है दूर से, बुंदकी जैसी,
1: तो ये मोती जला हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके जो कि पहले दूसरे हफ्ते में आ जाते हैं बुखार के। बेसिकली जैसे कि आज मान लो कोई भी आदमी उससे इन्फेक्ट हुआ बैक्टीरिया से, तो जो बुखार आने में जो समय लगता है वो कई बार वेरिएबल होता है, एक हफ्ते से आठ हफ्ते तक कई बार लग जाते हैं, जैसे आज आप वो हुए तो एक हफ्ते से, लेकिन यूजुअली एक हफ्ते से दो हफ्ते के बीच में
0: सिम्टम
1: आ जाते हैं,
0: बुखार भी आ जाएगा,
1: हाँ, यूजुअली एक हफ्ते से दो हफ्ते के बीच में आ जाते हैं, बट इट मे टेक अप टू 8 वीक्स ऑल्सो,
0: किसी की अगर इम्यूनिटी ठीक है
1: हाँ
0: बहुत
1: लंबा भी खींच जाएगा,
0: जितने समय में ये आ रहा है जाने में भी उतना ही समय लगता है, कई बार इसको बताते हैं कि लंबा चलता है
1: नहीं, यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो डेढ़ से दो हफ्ते के ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, और यदि नाले ट्रीटमेंट तो फिर अपना कोर्स पूरा करता है,
0: फिर तो
1: लंबा चल जाता है।
0: अब जैसे बरसात है तो बरसात में क्या होने के चांसेस के ज्यादा बढ़ जाते हैं क्या?
1: वो इसलिए कि कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारा वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, कई बार जो है वो सीवेज से कनेक्ट हो जाता है, तो उससे जो बैक्टीरिया है वो पानी में हमारे पीने के पानी में आ जाता है, या जो सब्जियां हैं वेजिटेबल्स हैं उन्हें हम कई बार रॉ खाते हैं,
0: हाँ
1: उन्हें हम रॉ खा लेते हैं तो उनके थ्रू वो बैक्टीरिया आ जाते हैं। तीसरा क्या कहते हैं हमारे हाथ हैं, इसका जो बेसिकली ये फैलता है उसे फीकोरल रूट बोलते हैं। फीकोरल रूट का मतलब है कि मुंह से आपका एंटर किया और लैट्रिन के रास्ते बैक्टीरिया बाहर भी निकल जाता है,
0: वहीं से फिर वो
1: स्प्रेड करता है, हाँ तो उसमें इसे इसलिए इसका स्प्रेड भी जो है ऐसे ही होता है, तो उसमें फैलने का ये है कि आप जो है से लैट्रिन गए, लैट्रिन आके आपने हाथ नहीं धोए कायदे से, आपने उसी हाथ से आपने खाना पीना खा लिया, तो इन्फेक्शन जो है आपका सीधे सीधे पहुंच रहा है, तो इसमें हैंड वॉशिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप खाना बना रहे हैं आप उन्हीं इन्फेक्टेड हाथ से बना रहे हैं तो बैक्टीरिया चला जाएगा। तो और यदि आप खा रहे हैं या बना रहे हैं तो भी उसी से पहुंच जाएगा, तो इसमें यह है कि खाना बनाने से पहले भी और खाना खाने से पहले भी हाथ धोना चाहिए, और टॉयलेट से आके भी पहले सबसे पहले हाथ धोने चाहिए, तो उससे चांसेस कम हो जाते हैं।
0: साफ सफाई बहुत प्रॉपर, अगर
1: प्रॉपर सैनिटेशन
0: अपनी भी घर की भी और परिवेश की भी
1: जी
0: तो
1: कम होगा, ऐसे ही कंटेमिनेटेड वाटर नहीं लेना चाहिए, जैसे आपने पी लिया जैसे रॉ निकलते हैं ऐसे ही पानी पी लिया, तो सेफ वाटर ड्रिंकिंग होनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो आप पानी को पहले उबाल लीजिए, उबाल के ठंडा कर लीजिए फिर पी लीजिए।
0: आप लोग जनरली जब बरसात पहले होती थी तो आप लोग यही कहते थे भैया कुछ नहीं है तो पानी को
1: उबाल लो फिर पी लो
0: ढक लो उसको फिर ठंडा करके,
1: तो ये उसके ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं ये सारी।
0: तो इसको क्या अपन वाटर बॉर्न डिजीज के उस कैटेगरी में रख सकते हैं, पानी से
1: कह सकते हैं
0: फैलाव
1: क्या? हाँ, पानी गंदा है
0: तो वो
1: कंटेमिनेटेड वाटर से तो फैलेगा। अच्छा चाट पकौड़ी खाने गए, आपने चाट पकौड़ी खाई, वो जो आपको चाट खिला रहा है उस वो

0: गर्मी का मौसम है, अब पसीना भी आएगा, वो इधर उधर शरीर पहुंचा,
1: तो उसने हाथ में उसके साफ नहीं है, उसमें इन्फेक्टेड
0: या किस पानी से वो
1: बना रहा है, पानी बना रहा है, तो ये सारी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है।
0: तो मतलब यह है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, हाथों को साफ रखें, परिवेश को साफ रखें, खाना, आपने सब्जियों और फलों की बात की,
1: हाँ,
0: तो फल को तो हम ठीक ही मानते हैं, रोही खा लेते हैं,
1: साफ
0: तो
1: करके
0: सब्जियों
1: खाना
0: तो
1: साफ
0: साफ
1: करके खाना चाहिए,
0: कम से कम जो पोर्टेबल वाटर है, साफ पानी हो,
1: उससे आप साफ करें,
0: साफ
1: फिर
0: करें, सुखा लें उसमें। तो अब जैसे कई बार आदमी भीग भी जाता है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो
1: भीगने से तो नहीं
0: इसमें
1: होगा,
0: नहीं होगा ना,
1: नहीं भीगने से इसका कोई
0: क्योंकि
1: संबंध
0: वायरल
1: नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है
1: हाँ,
0: तो
1: नहीं
0: नहीं है
1: नहीं
0: उसमें।
1: नहीं
0: तो
1: भीगने
0: अब
1: से।
0: चलिए ठीक है, ये हो गया, किसी व्यक्ति के शरीर में आ गया, निदान भी ऐसा लग रहा है कि भाई है, तो फिर तो ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। बचाव की तो बात हमने
1: हाँ,
0: कर ली कि भाई
1: नहीं,
0: साफ
1: मैं
0: सफाई
1: इससे पहले
0: रखें।
1: एक बात और कहूँगा।
0: जी
1: आजकल जो है लोग काफ़ी लिटरेट हो गए हैं,
0: हाँ
1: वो अपने आप लैब पे जाएंगे, कहेंगे विडाल टेस्ट कर दो,
0: हाँ
1: टाइफाइड
0: ये
1: के लिए
0: टाइफाइड के लिए विडाल
1: विडाल
0: टेस्ट।
1: टेस्ट कर दो।
0: हाँ
1: ये विडाल टेस्ट भी बड़ा नोटोरियस है,
0: हाँ
1: ये फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, फॉल्स नेगेटिव भी आता है, तो इस और
0: इसका
1: बहुत
0: क्या
1: सारी
0: मतलब? हाँ मतलब
1: मतलब बीमारी नहीं है तो भी आ सकता है पॉजिटिव, और बीमारी है तो भी नेगेटिव आ सकता है, इसका मतलब
0: तो
1: ये
0: मतलब ये नहीं कि आपने
1: है।
0: विड़ाल
1: हाँ,
0: करा
1: इसकी
0: लिया।
1: सेंसिटिविटी बहुत कम है, स्पेसिफिसिटी बहुत कम है, तो उसकी जगह वैसे तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो ये है कि आपको बुखार आया है एंड यू आर सस्पेक्टिंग कि टाइफाइड हो सकता है, तो आप ब्लड कल्चर कराएं, आपको ब्लड कल्चर कराना चाहिए। लेकिन कौन आदमी कराता है? हम लोगों के पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो वो इतनी दवाएं खा के आते हैं, तो यदि हम ब्लड कल्चर कराएंगे तो वो भी स्टराइल आ जाएगा, क्योंकि वो एंटीबायोटिक से सप्रेस हो जाती है, वो ख़त्म नहीं होती, सप्रेस हो जाती
0: दब
1: है,
0: गई, आएगी नहीं वो,
1: आएगी नहीं वो।
0: आएगी
1: हाँ,
0: नहीं।
1: तो वो आएगी नहीं, तो हम लोग भी फिर क्या करते हैं कि भाई एक उससे आगे के थोड़ा सा अच्छा टेस्ट है टाइफी डॉट,
0: हाँ
1: तो वो हम करा लेते हैं, उसमें आ जाता है, तो फिर हम मान लेते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है, तो हम मान लेते हैं कि भाई टाइफाइड ही होगा। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये टेस्ट जो है गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड तो ब्लड कल्चर है, या जो कैरियर स्टेट में जिनका बहुत लंबा फीवर चला जाता है उनका स्टूल कल्चर करते हैं, क्योंकि आदमी को बुखार नहीं है और वो हमारे आपके बीच में घूम रहा
0: हाँ तो वो
1: है।
0: फिर
1: हाँ, लेकिन वो
0: फैलाव का
1: कैरियर से,
0: काम
1: हाँ,
0: कर रहे हो
1: आधी
0: काम।
1: अधूरी दवाएं खाई, बीमारी
0: हाँ
1: पूरी तरह से गई नहीं, सिम्टम फ्री हो गया, सिम्टम्स नहीं है उसके कोई, लेकिन वो फैला
0: बीमारी को फैला, कैरियर का काम
1: फैला
0: कर रहा है,
1: फैला
0: खुद
1: रहा
0: लेके डोल
1: है,
0: रहा
1: खुद
0: है
1: लेके डोल रहा है।
0: सोसाइटी में
1: तो ऐसे लोगों में फिर स्टूल कल्चर कराना चाहिए, कभी कभी यूरिन कल्चर
0: मरीज
1: में
0: को लगता है कि यार मैं ठीक
1: भी
0: हो गया और डॉक्टर साहब ने तो
1: होते
0: मुझे
1: हैं।
0: इतने टेस्ट बता
1: हाँ,
0: दिए,
1: बता
0: लेकिन
1: दिए।
0: एक्चुअल की तह तक जाना है,
1: हाँ
0: क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि कई बार कहते हैं कि टाइफाइड रहा, बार बार आया,
1: हाँ
0: रिपीट हुआ,
1: हाँ
0: तो व्यक्ति की इम्यूनिटी शायद इतनी कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसकी आंतें कमजोर हो गई,
1: हाँ
0: खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, भूख
1: हाँ
0: चली गई।
1: ये बेसिकली आंतों की ही बीमारी है, और आंतों से ये ब्लड में जाता है बैक्टीरिया। कई बार तो ये होता है कि आंतों में घाव बन गए, ब्लीडिंग हो गई, उससे ब्लीडिंग हुई, आंतों के परफोरेशन हो गए, आंतों के ये जानलेवा भी हो सकती है ये टाइफाइड, क्योंकि
0: लंबा
1: आंतों
0: लंबा हो गया वो।
1: लंबा हो गया, तो आंतों के परफोरेशन का हो जाने पे सर्जरी इमरजेंसी हो गई, देन सर्जरी, और कई बार ब्रेन पे भी इसका इफेक्ट होता है, कन्फ्यूजन और ये सारी चीज़ें करता है, कार्डियक उस पर
0: इसका
1: भी।
0: डॉक्टर साहब क्या कोई वो है, क्या टीका है क्या
1: हाँ,
0: इसका?
1: बिल्कुल है टीका
0: क्योंकि
1: इसका।
0: इसके बारे में इसका
1: हाँ,
0: टीका है, कभी कम चर्चा होती है इस बात पर,
1: नहीं, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में टीका आता है
0: आता है बचाव में।
1: बचाव में, और हमारे पीडियाट्रिशियंस इसे लगवाते हैं, वैसे तो 6 महीने के बच्चे पे भी लगवा सकते हैं, लेकिन यूजुअली 9 to 12 month के महीने से लगवाते हैं,
0: अब
1: और
0: रिकमेंडेड उसमें आ गया है।
1: आ गया है 0.5 ml का छोटा इंजेक्शन है, वो लगवा देते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी, उससे इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, बाद में यदि हो भी रहा है तो कम
0: घातक नहीं होगा,
1: घातक
0: लेथल
1: नहीं
0: नहीं
1: होगा
0: होगा
1: इतना
0: उसमें, जैसे आपने कहा कि
1: इम्यूनिटी।
0: ये
1: हाँ,
0: जानलेवा हो सकता है,
1: क्योंकि
0: तो अगर टीका लगाए तो फिर उतना घातक नहीं
1: हाँ,
0: होगा।
1: बेसिकली ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी बेस्ड हैं, यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कम घातक होगा, और यदि आपकी इम्यूनिटी ख़राब है तो फिर ज़्यादा घातक
0: ज्यादा
1: होगा।
0: तो अब ऐसे लोग जो बचपन तो अपना निकाल चुके हैं, जवानी भी है, तो
1: लगवा
0: वो भी
1: सकते,
0: लगवा सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल लगवा सकते हैं इन कंडीशंस।

0: नहीं या तो वो बाहर एंडेमिक एरियाज में जा रहे हों जहाँ टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, या ऐसा उन्हें लगता है कि यहाँ टाइफाइड होने की संभावना ज़्यादा है. लेकिन एडल्ट के लिए ये है कि कुछ कहते हैं 2 साल, कुछ कहते हैं 3 साल बाद एक बूस्टर डोज लग जानी चाहिए.
1: कि टाइफाइड खतरनाक हो सकता है अगर हम लापरवाही
0: जानलेवा भी हो सकता
1: तो
0: है.
1: जान तो हमें लापरवाह नहीं होना है। और दो तीन चीज़ें कि बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उनका वैक्सीनेशन करा लें, हालांकि इस पर इतनी चर्चा नहीं होती लेकिन टाइफाइड का भी वैक्सीनेशन है और बहुत महंगा नहीं है, और जो अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसको रिकमेंड भी करते हैं। आपकी भी उम्र बढ़ गई है, कहीं ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ टाइफाइड हो सकता है, आप भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं, उस इस उम्र में भी हो जाता है। तीसरे यह है कि अच्छा पानी पिए, साफ पानी पिए। आजकल तो ज़्यादातर लोग RO का पानी पी रहे लेकिन नहीं है जिनके पास, तो पोर्टेबल वाटर अच्छा पानी पिए, अपने आसपास साफ सफाई रखें और हाथ की और घर की, खाना बनाते समय खाते समय अपने आसपास में बहुत सफाई का हमें ध्यान रखना है। कोरोना में इस बात को हमने बहुत अच्छी
0: अच्छे
1: तरीके
0: से
1: से
0: सीखा
1: जिया है और
0: तुमने.
1: महसूस किया और उसके रिजल्ट्स भी देखे, और भारतीय परंपरा और परिस्थितियों में सफाई का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण वो है। तो डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी उस पर निश्चित तौर पर आप गौर करेंगे, अपनाएंगे और उस अपनाई हुई जानकारी से बेहतर स्वास्थ्य और समाज में बेहतर मैसेज आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब आप आई जानकारी दी,
0: एक
1: इसके
0: बार
1: लिए
0: फिर
1: बहुत
0: से
1: बहुत
0: शुक्रिया आपका
1: जी, थैंक यू सर।
0: सिंह.
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता। टाइफाइड कारण लक्षण और निदान वार्ता करते डॉक्टर बाके बिहारी गर्ग, भेंट कर रहे थे OP सिंह। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
3: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फतेहपुर और चित्रकूट जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर में अपने दौरे के दौरान करीब 489 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले फतेहपुर आकांक्षी जनपदों में शामिल था और विकास के मामले में प्रदेश में सबसे पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती थी। उन्होंने कहा कि उस समय ना तो बेहतर सड़कें थी और ना ही स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। फतेहपुर जिले में भी करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में हर जिले का समान रूप से विकास करना है।
5: विकास की योजना की बात होती तो सड़क हो, पुल हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेज हो, बिजली हो, निवेश हो, हॉस्पिटल हो, कंपो मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हो या मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य, अब वह आपके जनपद में होता है।
4: फतेहपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की अगुवाई में अपराध के रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जुलाई महीने में पुलिस द्वारा 66 गुंडा एक्ट, 3 गैंगस्टर, 9 हिस्ट्री शीटर और 4 गैंगों का पंजीकरण कराया गया है। वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान 6 सातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि
6: हमारी फतेहपुर पुलिस है उसने जो आदतन अपराधी हैं उनके विरुद्ध हमने 66 ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पे गुंडा के चलानी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसी के साथ साथ 3 गैंग्स पे हमने गैंग्स की कार्रवाई करवाई है। कुछ लोग हमने इसमें पकड़े भी हैं, निरुद्ध भी करे हैं। उसके साथ साथ इनकी जो अवैध संपत्ति है उनका भी चिन्हांकन करके जो अदाय की इसमें कार्रवाई की जाएगी।
4: इस महीने 17 अभियुक्तों पर इनाम घोषित किया गया है जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर जिले में कुल 64 गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें लगभग 12,000 गौवंशों के रहने खाने व मेडिकल की व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है। मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जहां CCTV कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवव्रत गंगवार के मुताबिक जनपद में मौजूदा समय 64 गौ आश्रय स्थल संचालित है जिसमें 46 अस्थायी गौशालाएं हैं।
7: फतेहपुर में कुल हमारी इस समय वर्तमान में 64 गौ आश्रय स्थल संचालित है जिसमें हमारे 46 अस्थायी गौ आश्रय स्थल है। इसके अतिरिक्त हमारे 3 काजी हाउस हैं, 2 कान्हा हाउस हैं एवं वृद्ध गो आश्रय स्थल हमारे 13 हैं, जिनमें सभी 64 गो आश्रय स्थलों में हमारे 12,000 गोवंश संरक्षित हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय के दिए गए निर्देशों के क्रम में जल भराव एवं उसकी निकासी हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी भी हमारे केवल 2 गोआश्रय स्थलों में जहां पानी की समस्या कुछ शेड में आ गया था उसको हमने पानी का निष्कासन दिया गया है।
4: जिलाधिकारी के निर्देश पर जल निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

0: फतेहपुर जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जलंधर रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। करीब 33.10 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए गए स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकेंगी। पूर्ण विकास के बाद फतेहपुर रेलवे स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। पहले स्टेशन पर 3 प्लेटफार्म थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 4 कर दिया गया है। स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं का विस्तार करते हुए बेहतर प्रतीक्षालय, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, सुगम आवागमन, साफ सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्टेशन के आधुनिकीकरण से यात्रियों को सुरक्षित, सहज और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। फतेहपुर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने जिला अस्पताल में आयोजित कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग कर नवजात शिशुओं का केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उनकी माताओं को किट का वितरण भी किया एवं एक पौधा भी भेंट स्वरूप प्रदान किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक उत्सव नहीं बल्कि समाज में बेटी के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण संदेश है। हमारी बेटियां परिवार, समाज और राष्ट्र की अमूल धरोहर हैं। आज की बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, सेना, चिकित्सा और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना तथा महिला एवं बाल कल्याण की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य प्रत्येक बेटी को सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। सभी का दायित्व है कि इन योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुँचे।
1: फतेहपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
2: चित्रकूट में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग की करीब 84 करोड़ रुपए लागत वाली 31 परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें 15 परियोजनाएं अकेले चित्रकूट की हैं। मंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इन परियोजनाओं में प्रयागराज चित्रकूट, बांदा चित्रकूट और कौशाम्बी चित्रकूट मार्ग पर थीम आधारित प्रवेश द्वार, बेड़ी पुलिया से शंख चौक तक पर्यटन विकास, रामघाट पर कथा स्थल और तुलसी घाट पर आरती स्थल सहित कई धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है। परानू बाबा आश्रम, मानिकपुर के लैना बाबा मंदिर, मारी माता मंदिर और बोड़ी पोखरी के सौंदर्यीकरण तथा हाई मास्ट लाइट लगाने के कार्य भी प्रस्तावित हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के साथ चित्रकूट की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए तक की निर्माणाधीन परियोजनाओं को नवम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं करीब 8 करोड़ रुपए लागत से परंपरा वन स्टॉप सेंटर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर विकसित किया जा रहा है, जहां पर्यटकों को एक ही स्थान पर पर्यटन, संस्कृति और विरासत से जुड़ी जानकारियां और सुविधाएं मिल सकेंगी। चित्रकूट में औद्योगिक विकास की नई राह खुलने जा रही है। रामसैया के पास हरसौली, रानीपुर, खाकी और संग्रामपुर गांवों में करीब 50 एकड़ भूमि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन से मंजूरी मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। करीब 3 साल के इंतजार के बाद सामने आए इस प्रस्ताव को चित्रकूट के साथ पूरे बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में बड़े उद्योगों के साथ MSME इकाइयों को भी स्थापित किए जाने की योजना है। प्रशासन की कोशिश है कि हिंडालको, NTPC और NCL जैसे बड़े औद्योगिक समूहों के निवेश के लिए आकर्षित किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ कारोबार और परिवहन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग चिन्हित भूमि का कई बार निरीक्षण कर चुके हैं और पहुँच मार्ग समेत जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है।
3: जनपद में न्यूनतम 50 एकड़ भूमि जो जनपद मुख्यालय के 20 किलोमीटर के अंदर जगह उसे ढूंढा जाए, जहाँ पे इस प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा सकता है और उसके लिए रामशैया भूमि जो है चिन्हित की गई है, उसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव शीघ्र तैयार करके उसे शासन भेजा जाएगा।
2: देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ चित्रकूट में हर घर तिरंगा अभियान 2026 जोश व उत्साह के साथ जारी है। अभियान के तहत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के स्वयं सहायता समूहों द्वारा 1,20,000 राष्ट्रीय ध्वजों का निर्माण और वितरण किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समयबद्ध तरीके से ध्वजों का निर्माण और वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण भारतीय ध्वज संहिता और निर्धारित मानकों के अनुरूप करने तथा गुणवत्ता और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। 9 अगस्त से शुरू है यह आयोजन, 17 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में भौतिक और डिजिटल दोनों माध्यमों से जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराने के साथ वंदे मातरम का गायन कर सकते हैं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी डिजिटल अभियान में साझा कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से राष्ट्र प्रेम, एकता और गौरव के इस अभियान में

0: बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। बीते दिनों जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। राजकीय जिला पुस्तकालय में संचालित इस कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को निःशुल्क मार्गदर्शन और अध्ययन की सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सत्र 2025-26 में 301 विद्यार्थियों के पंजीकरण के मुकाबले नए सत्र 2026-27 में 360 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है, जो योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
1: हमारे यहाँ इस समय भी पंजीकरण पूर्ण रूप से खुला हुआ है। अभी भी कोई बच्चे चाहते हैं तो वो प्रवेश यहाँ पे कर सकते हैं। सभी परीक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क है और हमने प्रयास किया है कि सबसे बेहतर टीचर्स को, हमने हर एक टीचर को यहाँ इंटरव्यू किया गया कि आप सबके लिए ही कोचिंग आयोजित की जा रही है, अच्छी शिक्षा मिले उद्देश्य यही है।
0: कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अनुशासन, नियमित अध्ययन और सकारात्मक सोच के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों से नियमित रूप से 8 से 10 घंटे अध्ययन करने, सोशल मीडिया से अनावश्यक दूरी बनाए रखने और इंटरनेट का उपयोग ज्ञानवर्धन के लिए करने का आह्वान किया गया है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। विषय है जल संरक्षण के उपाय। आलेख और वाचन है विष्णु प्रकाश शर्मा का।
4: निसंदेह जल ही जीवन की महती आवश्यकता है। यदि पृथ्वी पर जीवन का मूल कारण जल की उपलब्धता है तो जीवन के संरक्षण के लिए जल का संरक्षण भी अनिवार्य है। पिछले कुछ दशकों से जल की समस्या विकट होती जा रही है। इसका कारण यह नहीं है कि जल कम अथवा समाप्त हो रहा है, अपितु बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण, वाष्पीकरण और जल प्रदूषण से बड़ी मात्रा में जल संकट के लिए उत्तरदायी हो गए हैं। जल का दुरुपयोग भी जल की कमी उत्पन्न कर रहा है। ये समस्याएं तो सामने दिखाई दे रही हैं, इनसे भी कई गुना गंभीर समस्याएं अन्य भी हैं। यदि प्रकृति की ओर देखें तो जहां एक ओर प्रतिवर्ष पृथ्वी पर वर्षा का जल घटता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी के भीतर जल भंडार का अधिक से अधिक दोहन व शोषण किया जा रहा है। जल के उचित प्रबंधन का अभाव हमारे दैनिक जीवन में जल की कमी का एक प्रमुख कारण है। जल का प्रबंधन, संग्रहण, संरक्षण, बचाव कैसे किया जाए, ये वर्तमान शताब्दी की प्रमुख चुनौती है। जल संसाधनों का नियोजन एवं प्रबंधन एक जटिल कार्य है, क्योंकि जल के प्रयोग एवं उपभोग के स्तर पर अनेक प्रकार के अभिकर्ता अंतर्ग्रस्त होते हैं। इनके लक्ष्य, परिवर्त्य और प्रेरणाएं विविध होती हैं और पर्यावरणीय चिंताओं का स्तर भी भिन्न होता है। कृषि, उद्योग, घरेलू वितरण और उपभोग से लेकर जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और मनोरंजन के साधनों के रखरखाव तक जल संसाधनों के प्रयोग में जो क्रियाएं, संस्थाएं एवं अभिकरण प्रत्यक्ष तौर पर परस्पर अंतरक्रिया करती हैं, वे अनेक हैं। अतः जल का समेकित प्रबंधन एवं संग्रहण आवश्यक है, ताकि जल के प्रयोक्ताओं के बीच प्राकृतिक विवादों को कम किया जा सके एवं नए नियमों और प्राथमिकताओं को प्रतिस्थापित किया जा सके। प्राचीन काल से ही भारत में जल संचयन की परंपरा रही है। कुएं, बावड़ियां, तालाब, कुंड आदि के माध्यम से जल का संचयन होता आ रहा है। आधुनिक जल संचय प्रणाली के होते हुए भी पारंपरिक जल संचयन प्रणाली आज के युग में भी पूर्णतया उपादेय है। वर्तमान में भारत के कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 180 अरब घन मीटर है, जो देश में उपलब्ध कुल जल की संभाव्यता का मात्र 10% ही है। देश की अर्थव्यवस्था में भूजल की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूजल का दोहन सीधे उपभोक्ताओं के नियंत्रण में होने से यह विभिन्न उपयोगों के लिए प्राथमिक साधन बन गया है, जिसके की कई स्थानों पर विवेकपूर्ण उपयोग भी नहीं किया गया है, जिससे समुचित मात्रा में जल उपलब्ध कराना कठिन हो रहा है, क्योंकि अनावश्यक दोहन होने से स्थिति विकट हो गई है। भूजल स्तर में गिरावट चिंता का विषय है। भारत में सभी जगह पर यह स्तर निरंतर घटता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण के चलते पृथ्वी के गर्म होने से ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, इससे पानी की उपलब्धता कम होती जाएगी। वर्षा तो अधिक होगी, लेकिन वह इतनी शीघ्रता से होगी कि बाढ़ें आएंगी, पानी बह जाएगा, जिससे भूमि के नीचे पानी कम पहुंचेगा। क्योंकि जल की मात्रा में वृद्धि करना संभव नहीं है, अतः उपलब्ध जल का सही प्रबंधन ही एकमात्र उचित विकल्प है। वर्षा जल का संग्रहण ही एकमात्र सबसे अच्छा विकल्प है। वर्षा जल का जल के अभाव को समाप्त करने का एक प्रभावी साधन हो सकता है। इसके अंतर्गत वर्षा जल के संचयन की विभिन्न तकनीकों को अपनाकर वर्षा के जल को छतों पर रोककर जल स्रोतों में भेजा जाता है। अध्ययनों के अनुसार यदि 1 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो 1000 वर्ग फुट की छत से लगभग 1000 लीटर जल बहकर निकल जाता है। यदि सभी लोग ऐसे उपाय कर जल संग्रहण करें तो जल संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में क्रांतिकारी सफलता मिल सकती है। वर्षा के जल के संग्रहण से भूजल भंडारण में वृद्धि, भूमि जल गुणवत्ता में सुधार,

भूजल के प्रदूषण को कम करने में सहायता मिल सकती है, जिससे जल स्तर में गिरावट पर भी नियंत्रण किया जा सकता है और जल के सतही बहाव से होने वाली समस्याओं जैसे जलाक्रांता, नालों का भरकर रुक जाना इत्यादि को भी कम किया जा सकता है। साथ ही वर्षा जल के संचयन से जल की उपलब्धता बढ़ाने में भी सफलता मिलेगी, विशेष तौर पर वहाँ जहाँ जल की पर्याप्त आपूर्ति होती है अथवा सतही संसाधनों का अभाव है। बाढ़ की आपदा भी इस प्रक्रिया से कम होगी। स्वतंत्रता के बाद से अनेक बड़े बांधों का निर्माण किया गया है और हो रहा है, जिससे नदी घाटी परियोजनाओं से अनेक लाभ हुए हैं। बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनता के सहयोग से जल के प्राचीन स्रोतों को पुनः विकसित करना आवश्यक है, तभी भारत जैसे विशाल तथा विविधतापूर्ण देश की जल आपूर्ति की समस्या का निदान संभव हो पाएगा।

0: कार्यक्रम आबोहवा में अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण के उपाय, इस विषय पर आलेख। आलेख और वचन था विष्णु प्रकाश शर्मा का। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है गांधी चर्चा, विषय है प्रार्थना की उपयोगिता। इस विषय पर गांधी जी के विचार।

और अब प्रार्थना की उपयोगिता विषय पर बापू के विचार। प्रार्थना की उपयोगिता के विषय में मेरे मन में शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रार्थना में आप अशुद्ध विचार से बच जाते हैं। ये कोई कम उपयोगिता नहीं, लेकिन ये तो पहली सीढ़ी है। ये जरूरी नहीं कि प्रार्थना करते समय हम उसके अर्थ में ही लीन रहें। जब हम प्रार्थनामय हो जाते हैं तो अर्थ का भान नहीं रहता। शुद्धतम स्थिति में अर्थ के परे पहुंच जाते हैं। उस दशा में भान मात्र ईश्वर का रहता है। भाषा बाधा रूप बन जाती है। मैं इस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता। प्रार्थना का हेतु तल्लीन होना है। सामाजिक प्रार्थना का हेतु समाज के रूप में तल्लीन होना है। व्यक्ति की समाज में डूब जाना है। व्यक्ति समाज में और समाज ईश्वर में लीन हो जाता है। ओम के उच्चारण में अथवा राम नाम में कौन सा अर्थ है? जो उसमें है वही प्रार्थना के श्लोकों आदि में है। मुझे इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं कि जो ये समझकर प्रतिदिन प्रार्थना का उच्चारण करता है वो अंत में परम शांति पाता है। जो समाज को चाहता है उसे सामाजिक कार्य में यानी सामाजिक प्रार्थना में अरुचि होनी ही नहीं चाहिए। जो ईश्वरमय बन जाता है वो तो समूचे संसार को ईश्वरमय देखता है। कहना होगा कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सामाजिक कार्य में

सामाजिक प्रार्थना पहली सीढ़ी है। हबशियों से लेकर यूरोप के ईसाइयों, अरब के मुसलमानों और भारतवर्ष के हिंदुओं तक कोई प्रार्थना के बिना अपना काम चला नहीं पाए। गिरजाघर, मस्जिद और मंदिर जमींदोज हो जाएं तो समाज भी जमींदोज हो जाएगा। ईश्वर के निकट तो 24 घंटे स्वर्गीय गान होता ही रहता है, हम उसकी कल्पना भर कर सकते हैं। सामाजिक प्रार्थना उस गान में सम्मिलित होने का एक अल्प प्रयत्न है। जो उस गान में सम्मिलित हुए हैं उनके लिए तो नित्यानंद है। प्रार्थना अंततः श्रद्धा का विषय है, इस श्रद्धा को टिकाने लायक रस उसमें उड़ेलने होंगे। आखिर इस भावना को लेकर समाज में बैठेंगे और तन्मय होंगे तो वही प्रार्थना हो जाएगी, फिर वो चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना बोला जाए। दुनिया में सामूहिक मूक प्रार्थना भी प्रचलित है। रोमन कैथोलिकों में भक्त लोग घंटों मूक भाव में बैठे रहते हैं और प्रार्थना में ध्यानग्रस्त रह सकते हैं। हमें तो जैसे भी बने शांति प्राप्त करनी है। कई वर्षों से शुद्ध हेतु पूर्वक प्रार्थना से चिपटे रहे हैं, इसलिए हमें किसी दिन सच्ची कुंजी मिल ही जाएगी। इस बीच लोग आने लगे हैं, इससे संतुष्ट रहना। कुछ वस्तुओं का उपाय केवल काल है, हम जितना खोदते हैं उतना बिगड़ता है और धीरज से बाट जोहते हैं तो उपाय मिल जाता है। मुझे ईश्वर का स्मरण प्रतिक्षण रहता है, इसका अर्थ ये है जागते हुए ऐसा कोई समय नहीं कि जब मुझे ये भान न हो कि ईश्वर मुझ में है और सब देखता है। ये भान बुद्धि को है, अभ्यास से हुआ है, हृदय को है, सो नहीं कहता क्योंकि मैं अपने को भयमुक्त नहीं मानता। सर्पादि का भय तो है ही, मृत्यु को मित्र समझते हुए भी देखता हूं कि दिल की गहराई में जीने की इच्छा भी रही है, लगता है जीना प्रिय है। इसी के साथ मृत्यु से भेंटने की तैयारी भी लगती है। ऐसी विचित्र भावना है। इस निर्बलता के कारण मैं ये नहीं कह सकता कि हृदय में ईश्वर का वास हुआ है। ये दूसरी बात है कि बुद्धि कबूल करती है कि वो हृदय में रहता है। जिसे ये अनुभव जन्य ज्ञान है कि ईश्वर हृदय में रहता है, उसे देह के विषय में अत्यधिक अमूर्छा होगी। देख सकता हूं कि मैं इस स्थिति तक पहुंचा नहीं हूं, तिस पर भी बुद्धि ने जिसे स्वीकार किया है वो चीज इतनी मजबूत है कि वो हृदय में उतर रही है, ऐसा भी प्रतीत होता है। ये थे प्रार्थना की उपयोगिता विषय पर बापू के विचार। और अब सुनते हैं डीवी पलुस्कर के स्वर में बापू का प्रिय भजन।

0: प्रार्थना की उपयोगिता विषय पर गांधी जी के विचार। अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा के अंतर्गत ये विषय। आइए अब आपको सुनवाते हैं विशेष वार्ता, हमारा गौरव राष्ट्रीय ध्वज। वार्ताकार हैं खड़क सिंह छोकर।
1: प्रत्येक देश का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, जो एक देश की आन बान शान का प्रतीक होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें तीन रंग, केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग है। बीच में 24 तीलियों का अशोक चक्र है। ऊपरी पट्टी केसरिया रंग देशभक्ति, देश की शक्ति, साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति, सत्य और सादगी को प्रदर्शित करता है। और नीचे हरे रंग की पट्टी उर्वरता, आनंद, हरियाली, खुशहाली, समृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। राष्ट्रीय ध्वज देश के सच्चे देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसको भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यह देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक होने के साथ साथ देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में संगठित करता है। ध्वज के केंद्र में सफेद पट्टी में गहरे नीले रंग के अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। इन 24 तीलियों से ही मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग की तुलना की है, इसलिए इन्हें मनुष्य के लिए 24 धर्म मार्ग भी कहा गया है। ये नीला रंग निरंतर गति और प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। अशोक चक्र सम्राट अशोक के समय से शिल्प कलाओं के माध्यम से अंकित किया गया था। उस धर्म चक्र को विधि चक्र कहते हैं, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है। वैधानिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता लागू किया गया था। 2002 से पहले आमजन को केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही तिरंगा फहराने की छूट थी। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया। इसके बाद कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। इस संहिता में सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों का समावेश है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगा ध्वज फहराते समय निर्धारित किए गए नियम व शर्तों का पालन सुनिश्चित रूप से किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज जब भी फहराया जाए उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए तथा स्पष्ट रूप से दिखाई दिए जाने वाले स्थान पर फहराया जाए। इस संहिता के अनुसार सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराए जाने तथा विशेष अवसरों पर रात को भी फहराए जाने का प्रावधान है।

ध्वज को सदा स्फूर्ति के साथ फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। ध्वज फहराते समय और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है। जब ध्वज का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो ध्वज इस प्रकार फहराया जाए कि वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो ध्वज उनके दाहिनी ओर होना चाहिए। जब ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो सामने की ओर बीचों बीच में या गाड़ी के दाहिनी ओर लगा होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय विशेष ध्यान देने की बात है कि अन्य किसी भी तरह का ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जा सकता है तथा बराबर में भी नहीं लगाया जाए। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। ध्वज हमेशा स्वच्छ हो तथा फटा पुराना नहीं होना चाहिए। ध्वज संहिता के एक प्राविधान में संशोधन करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता हुआ और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा, यह कपास, पॉलिस्टर, ऊन या रेशमी खादी से बना होगा। इससे पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी। विगत वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की गई थी। इसके लिए सरकार ने झंडा संहिता में बदलाव किया था। इससे नियमानुसार तिरंगा दिन और रात फहराए जाने की अनुमति प्राप्त हुई थी। तिरंगा फहराते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो झुका हुआ न हो, वह जमीन से न छू रहा हो, उसका कोई भी हिस्सा पानी में न डूब रहा हो। झंडे का किसी भी प्रकार से कॉमर्शियल प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसी को सलामी देने के लिए ध्वज को नहीं झुकाया जाएगा। ध्वज को वस्त्र के तौर पर या किसी तरह से पर्दा लगाने या किसी भी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने, मंच को सजाने में भी ध्वज का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। गाड़ी, रेलगाड़ी, वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह ध्वज के सम्मान और निष्ठा के प्रति कोई अपमानजनक कृत्य पाया जाता है तो संहिता के अनुसार 3 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय उत्सव पर हर भारतीय घर, स्कूल, कार्यस्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। इस संबंध में वर्ष 2004 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि सम्मान और गर्व के साथ स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) क्लॉज ए के अनुसार एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। नागरिक राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और भावनाओं की अभिव्यक्ति गर्व से कर सकता है। भारत की ध्वज संहिता अलग अलग संदर्भों में भारतीय झंडे के प्रयोग के नियमों का एक समूह है और इसे 1968 में बनाया गया था। बाद में वर्ष 2002 और वर्ष 2008 में इसको अद्यतन किया गया था। ध्वज संहिता का प्रथम भाग मानक ध्वज के विवरण और आयाम से संबंधित है। इसके अनुसार भारतीय तिरंगा 3 बराबर आयताकार पट्टियों से बना हुआ है, जिसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है। भारतीय ध्वज संहिता का अगला भाग संशोधन प्रदर्शन से संबंधित है। झंडे की केसरिया पट्टी सबसे ऊपर और सटीक प्रदर्शित करके ही फहराना चाहिए। ध्वज का कोई भी भाग जमीन को न छूने पाए, यह ध्यान रखना होगा। ध्वज का विज्ञापन, परिधान या किसी भी तरह से चादर के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। झंडे को आकर्षित करने के लिए उस पर किसी भी प्रकार का अभिलेख या भित्ति चित्र अंकित करना भी अपराध की श्रेणी में है। झंडे के अपमान पर नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जिसे 2003 में संशोधित भी किया गया था, के अनुसार झंडे को जमीन पर रखने जैसे कई अनादरों पर सजा का प्रावधान है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता का तृतीय भाग रक्षा प्रतिष्ठानों को छोड़कर ध्वज को सही स्थान पर फहराने, रखने, निपटान करने जैसे दिशा निर्देशों से संबंधित है, जो अपने स्वयं के झंडा प्रदर्शन संहिता द्वारा शासित होते हैं। परेड के दौरान झंडे को सलामी दी जाती है तो सभी लोगों को झंडे के सामने सावधान की स्थिति में खड़े होना चाहिए एवं वर्दी वाले लोगों को सावधान की स्थिति में झंडे को सैल्यूट करते हुए खड़े होना चाहिए। राष्ट्रीय शोक घोषित होने पर ध्वज को आधा झुका हुआ फहराया जाता है। झंडे को आधा झुकाने से पहले ऊपर उठाया जाता है। इस स्थिति का अर्थ होता है कि राष्ट्र को गौरवान्वित करना और चिंता के साथ सम्मान से विदाई देना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था तथा 29 मई 1953 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर यूनियन जैक तथा नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराता नजर आया था। इस समय शेरपा, तेंजिंग और एडमंड माउंट हिलेरी ने एवरेस्ट फतह की थी।

1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने भारतीय ध्वज को लेकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। 21 अप्रैल 1996 को स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने MI-8 हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर पहली बार तिरंगा उत्तरी ध्वज ध्रुव फहराया था। 7 दिसंबर 2014 को 50,000 भारतीय स्वयंसेवकों द्वारा दुनिया में सबसे बड़ा मानव झंडा बनाने के लिए गिनीज बुक में अपना नाम अंकित कराया था। 23 जनवरी 2016 को सबसे ऊंचा ध्वज एक 293 फुट के स्तंभ पर फहराया गया था। ये ध्वज 99x66 फीट की नाप का था। 18 फरवरी 2016 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय ध्वज भारत के सभी केंद्र प्रायोजित विश्वविद्यालयों के परिसर में कम से कम 207 फीट ऊंची मस्तूल पर फहराए जाएंगे। संशोधन के बाद नए नियम में कहा गया है कि तिरंगा दिन रात फहराया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति के लिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता का किसी भी रूप में उल्लंघन न होने पाए। किसी सार्वजनिक निजी संगठन या शैक्षिक संस्थान के सदस्य द्वारा भारतीय ध्वज का आरोहण सभी दिनों और अवसरों आयोजनों पर राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा गौरव का प्रतीक है। इसकी आन बान शान के लिए प्रत्येक भारतवासी दृढ़ता के साथ संकल्पित हैं।

अभी आप सुन रहे थे विशेष वार्ता हमारा गौरव राष्ट्रीय ध्वज। वार्ताकार थे खड़ग सिंह छोकर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे ये देशगान।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक आवश्यक सूचना सुनिए।
2: सावधानी अपनाएं, जीवन बचाएं। डूबने से बचाव के लिए आप सभी से एक विशेष अपील। आपकी जरा सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए जल स्रोतों के पास जाते समय इन जरूरी सुरक्षा उपायों का हमेशा पालन करें। सुरक्षा के लिए क्या करें? अगर आपको तैरना नहीं आता है तो नदी, नहर, नाले या तालाब में बिल्कुल न जाएं और अपने परिजनों को भी ऐसा करने से रोकें। बच्चों को पुलिया या ऊंचे टीलों से पानी में छलांग लगाकर नहाने से सख्ती से रोकें। केवल बेहद जरूरी होने पर ही पानी में उतरें और पानी की गहराई का हमेशा ध्यान रखें। क्षमता से ज्यादा भरी हुई यानी ओवरलोडेड नाव में बिल्कुल न बैठें। जब भी किसी नदी, पोखर या तालाब में सामूहिक रूप से स्नान करने जाएं, तो अपने साथ 10 से 15 मीटर लंबी एक मजबूत रस्सी, धोती या साड़ी जरूर रखें, ताकि आपात स्थिति में किसी डूबते व्यक्ति को बचाया जा सके। इन बातों की अनदेखी बिल्कुल न करें। नदियों, नहरों और जलाशयों के पास लिखे हुए चेतावनी बोर्ड की कभी अवहेलना न करें। छोटे बच्चों को घाटों और पानी के बिल्कुल पास न जाने दें। किसी के उकसावे में आकर या जोश में पानी में छलांग न लगाएं। नदियों और घाटों पर रीति रिवाजों और संस्कारों का निर्वहन करते समय विशेष सावधानी बरतें। नदी या तालाब में तैरते या नहाते समय कोई स्टंट न करे और खतरनाक तरीके से सेल्फी न ले। आपकी यह गलती जानलेवा हो सकती है। याद रखें, आपका जीवन आपके परिवार के लिए अनमोल है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
1: अभी आप सुन रहे थे ये आवश्यक सूचना। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।
0: आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आज है 14 अगस्त। हम सब जानते हैं भारत में आज़ादी की पहली सुबह 15 अगस्त को हुई थी। हालांकि इसकी शुरुआत 14 अगस्त की मध्य रात्रि से ही हो गई थी। देशभक्ति के उत्सव का दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस, जो हर साल हम मनाते हैं 15 अगस्त को। भारत की आज़ादी का इतिहास लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के खिलाफ चले लंबे संघर्ष, बलिदान और जन आंदोलनों की कहानी है। कहानी है उन वीर सपूतों की, जिन्होंने हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर दिए इस देश पर।

केसरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना बी प्राग की आवाज में, लिखा था मनोज मुंतशिर ने और धुन बनाई थी आरको ने। दोस्तों, भारत का स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसे हम कल मनाएंगे। यह दिन हमें उन ऐतिहासिक क्षणों की याद दिलाता है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह दिन हमारे लिए केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान को याद करने का भी दिन है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

हमारा भारत केवल एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं है, यह विविधताओं में एकता का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग धर्म और परंपराएं हैं, फिर भी हम सभी एक पहचान से जुड़े हैं कि हम भारतीय हैं।

पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में। दोस्तों, देशभक्ति का अर्थ केवल अपने देश से प्रेम करना या राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराना भर नहीं है। सच्ची देशभक्ति वह भावना है जिसमें हम अपने देश की मिट्टी, संस्कृति, परंपराओं, इतिहास और देशवासियों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी महसूस करते हैं।

दोस्तों, जब हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं, राष्ट्रगान सुनते हैं, यह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो हमारे अंदर गर्व की भावना जागती है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि देशभक्ति केवल कुछ विशेष दिनों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए।

चक दे इंडिया फिल्म का ये गीत आपने सुना सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। दोस्तों हमें देशभक्ति को केवल भावनाओं और नारों तक सीमित नहीं करना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाना, कानून का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, स्वच्छता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, करों का सही भुगतान करना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, ये सभी देशभक्ति के ही रूप हैं और हमें इनका पूर्णतः पालन करना चाहिए।

0: सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज़ों में अभी आपने सुना सरफरोश फिल्म का ये गीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: जी सुनिए ये सूचना।
1: सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नाव दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सभी नौका चालकों से एक विशेष अपील। यात्रियों की सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए नाव चलाते समय इन सुरक्षा नियमों का पालन करें। नौका चालक कृपया ध्यान दें, आपको क्या करना है, अपनी नाव में पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट हमेशा साथ रखें। यात्रा शुरू करने से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षा नियमों की जानकारी जरूर दें। अपनी नाव का उचित रख रखाव करें और ट्यूब या अन्य तैरने वाले उपकरण हमेशा साथ रखें। किसी भी आपात स्थिति के लिए आपदा संकेत देने वाले उपकरण अपने पास रखें। यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी लगातार लेते रहें। पेट्रोल, डीजल या किसी भी अन्य ज्वलनशील वस्तु को नाव में एक सुरक्षित जगह पर ही रखें। आसपास चल रही अन्य नावों पर नजर रखें और मदद मांगने के लिए संचार उपकरण हमेशा साथ लेकर चले। नौका चालक यह गलतियां बिल्कुल न करे। नाव पर कभी भी तय सीमा से अधिक भार न होने दे। नाव पर बैठे सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट पहनाए और स्वयं भी पहने। नाव चलाते समय किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करे। लालच में आकर क्षमता से अधिक यात्रियों को नाव में न बिठाए। मौसम खराब होने या तेज हवाएं चलने की स्थिति में नाव का उपयोग बिल्कुल न करे। सूर्यास्त के बाद नाव संचालित न करे। प्रशासन द्वारा तय किए गए प्रतिबंधित क्षेत्रों में नाव लेकर न जाएं और सबसे जरूरी, नाव को बहुत तेज गति से न चलाएं। आपकी एक छोटी सी सावधानी कई लोगों का जीवन बचा सकती है। नियम अपनाएं, दुर्घटना से बचें।
0: अभी आपने ये सूचना सुनी। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर।
2: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आपको बता दें, इसके पहले जो गीत आपने सुना वो हमने लिया था जवानी दीवानी फिल्म से। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की।

आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की, लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

0: दी।
1: आनंद फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मुकेश के स्वर में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कटी पतंग फिल्म से, गाया है किशोर कुमार ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। दिन के 11 बजे हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है संजय सारस्वत की।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो।
1: हाँ सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ।
0: जी। अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की।
1: और हरियाली तीज की भी।
0: जी, बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है सर। परिवार में
1: सब अच्छा चल रहा, अपना सुनाओ सर, आप सब सही हैं?
0: सब बढ़िया है सर।
1: जी सर, मैं
0: आज
1: जी आशीर्वाद बना रहे यही कामना करता हूँ। गाना सुनवा दीजिए,
0: जी बताइए,
1: देशभक्ति गीत, देशा देश है मेरा वीर जा रहा।
0: सुनवाते हैं सर आपकी पसंद का ये देशभक्ति गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से नमस्कार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार
0: नमस्कार,
1: सर। मैं बेसोता मित्र डॉक्टर वहां से भजन लाल बोल रहा हूँ सर।
0: स्वागत है भजन लाल जी कार्यक्रम में।
1: और साहब आप कुशल हैं?
0: सब आशीर्वाद है आपका, प्रभु
1: और भाई
0: का।
1: कहना यही चाहते हैं कि आप भगवान से प्रार्थना करें आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हमें अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलते रहे सर।
0: आप भी ठीक होंगे
1: हाँ ठीक है सर।
0: जी, ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
1: हाँ स्वस्थ है मस्त है सर।
0: आज बताइए क्या फरमाइश है।
1: हाँ शंकर जी का गाना था, जय भोलेनाथ जय हो प्रभु सबसे जगत में ऊंचा है तू।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये भक्ति गीत।
1: जी सर
0: शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर आपने हमारा कॉल उठाने के लिए सर।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।

0: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
0: आईना देख के समझने की कोशिश कर रहा हूँ आईना देख के समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आज अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी औकात की तरह तोड़ ली मैंने, आज फिर उसे समेटने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छी लाइनें सुनाते हैं आप। अपना परिचय भी दे दीजिए।
0: मैं बक्सेना दातागंज बदायूं से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ।
1: जी ठाकुर साहब, आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में।
0: थैंक यू सर।
1: कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस समय घर पे आया हूँ। वैसे तो हरिद्वार में जॉब कर रहा हूँ, घर पे ही आया हूँ क्योंकि छुट्टी चल रही है सर मेरी अभी।
1: अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। कार्यक्रम हमारा हरिद्वार में सुनते हैं या नहीं?
0: नहीं सर, हरिद्वार में भी सुनते हैं, न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से आकाशवाणी मथुरा को सुनते हैं हम।
1: हमसे जुड़े रहा करिए।
0: जो बातें रहती हैं, बातचीत युवाड़ी है या कोई भी और प्रोग्राम, उस पर हम अमल भी करते हैं। उसी प्रोग्राम के जरिए अपने हिसाब किताब से अपनी जिंदगी भी चलाते हैं।
1: आज फोन बहुत दिनों बाद किया है आपने।
0: जी जी जी सर, बिल्कुल फोन बहुत दिनों बाद लगा। ये तो है क्योंकि फोन लगाने के लिए समय निकालता था पर फोन लगता नहीं था, आज लग गया। बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ वो भी।
1: चलिए, क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में विमल जी?
0: फिल्म का नाम रहेगा सर रंग, और इसमें बेहतरीन सा नगमा सुना दीजिए, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया, सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।
0: कुछ नाम बोल दो सर चलते चलते प्रोग्राम में।
1: बोलिए।
0: सबसे पहले मेरी वास रहेंगी सरता, उसके बाद मेरे बच्चे शुभ लव गुनगुन, रामपुर से अमरजीत, दिव्यांश यादव, खेड़ी से, साथ में सर आप रहेंगे इस गीत में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू सर।

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी, राम राम जी, आपसे मुखातिब हूँ जी।
0: नेत्रपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत
1: सर, आपका स्वास्थ्य और टीम का स्वास्थ्य कैसा है सर?
0: बहुत अच्छे हैं सब लोग। आप कैसे हैं?
1: सर सही, बिल्कुल कोई बात नहीं है।

0: तो अभी तक तो अब कल का पता ही कल क्या होगा।
1: सब कुछ अच्छा होगा, यकीन रखिए।
0: अब सर हो गया 78 का, तो
1: ये
0: काफी
1: तो
0: हो गई।
1: उम्र की कोई सीमा थोड़ी है, जो प्रभु ने दी है
0: सर
1: उतनी तो मिलेगी मिलेगी
0: सीमा कोई नहीं सर।
1: जी।
0: आज
1: आज
0: फिल्म है ब्रजभूमि,
1: जी जी
0: चारों धामों से ज्यादा धाम दर्शन कर लो जी।
1: सुनवाते हैं नेत्रपाल जी आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर राधे राधे।
1: राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्कार।
0: आदरणीय सारस्वत साहब को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कौन
0: और
1: बोल
0: सर,
1: रहे हैं आप?
0: मैं सर आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ सर, गांव उस पार से। सर
1: कैसे हैं यादराम जी?
0: बहुत अच्छे सर, आप लोगों की हमारे ऊपर दया है, दृष्टि है, कन्हैया जी की आप पे भी कृपा है, हम पे भी कृपा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सर हार्दिक शुभकामनाएं सर हमारी स्वतंत्रता दिवस की।
1: बिल्कुल, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले स्वाधीनता दिवस की।
0: और सर जो है सावन का महीना चल रहा है सर ये, तो
1: जी
0: इसमें भाई बहन का त्योहार है, पवित्र त्योहार है। ब्रज मंडल में तो साहब धूम मची है साहब, कहीं हिड़गुले पड़े हुए हर मंदिर में, और अपने घर पर ठाकुर जी की सेवा होती है तो वो भी वहीं पे भी घर पे भी हिड़गुले में झूल रहे हैं ठाकुर जी हमारे।
1: बिल्कुल, यही तो विशेषता है ब्रज भूमि की।
0: हाँ सब हमारी ब्रजभूमि के तो वही रखवाली हैं जो भी हैं, जो
1: पूरी दुनिया से लोग इसीलिए तो ब्रजभूमि की तरफ आकर्षित होते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: आज क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में बताएं?
0: काली टोपी लाल रुमाल, गोरी ओढ़ के मलमल निकली के हाय दिल मेरा मलमल गई। हम सभी ब्रज रेडियो श्रोता मित्रों को सुनवा दे सर, और आप भी सुने। नमस्कार।
1: सुनवाते हैं यादराम जी आपकी पसंद का ये गाना।
0: जी
1: बहुत
0: सर,
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं सर हमारा कॉल शामिल करने के लिए सर। नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
1: जय श्री कृष्णा।

अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण।

अभी आपने अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना। स्वर है सुमन कल्याणपुर का।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से FM 102.2 MHz पर।

पंडित जसराज के स्वर में आपने सुनी ये भक्ति रचना। आइए एक और भजन आपको सुनवाते हैं। कलाकार हैं चित्रा सिंह।

सुरेश वाडेकर और साथियों की गाई इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। लीजिए अब पेश है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम गीत बात और SMS। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। हमारे सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। और मित्रों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आपकी फरमाइश के इस नगमे के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत। गीत के बोल अनजान ने लिखे थे, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और इस गीत को सुनने के लिए हमें इन श्रोताओं के संदेश प्राप्त हुए। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का संदेश हमें प्राप्त हुआ। अगले फरमाइश करता है हमारे कर्मा चौक लोहारी डीह से यशवंत साहू, रमेशिया, हर्ष और अंश साहू। आप हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र के श्रोता। नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद गोविंदपुरा अहमदनगर से हैं। जुनैद मुजावर, सबिहा और मिखाइल मुजावर। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हैं पीएस नावकर, निर्मला और विशाल नावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से हैं नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहेकर। ये संदेश हमें मिला ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा का, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से। अगले श्रोता हैं हमारे डोंडी लोहारा बालूद छत्तीसगढ़ के देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर। ये हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत और भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर के श्रोता। अगला संदेश हमें लिखा है सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर ने डाबकी रोड अकोला से। आप हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर के श्रोता हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी और तमन्ना भाटिया। ये फरमाइश हमें भेजी है काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर के श्रोताओं ने। आप हैं प्रकाश रंभाड़े, भारती, जाह्नवी, वैष्णवी और हर्षल रंभाड़े। और मधुबनी बिहार से हमसे जुड़े हैं नवीन सिंह, ज्योति रानी, मेनका पासवान, श्वेता, स्वाति, सुशांत, गोदावरी, क्रांति, प्रदीप कुमार नायक, राजबहादुर शाह, शंभू शाह, करिया गुप्ता और इनके बहुत सारे संगी साथी। और आप हैं शाहूर नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल मनवर और बेबी प्रियांशी। आइए मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे प्यार ही प्यार फिल्म का नगमा। गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा ने इस गीत को सुनना चाहा। अगले फरमाइश करता हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। आप हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। ये संदेश हमें भेजा है मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा ने। सतना एमपी से हमसे जुड़े हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप हैं सिंगाड़ तलाई खंडवा एमपी से राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी, कामेश और भारती यादव। बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। वीरमगाम गुजरात के श्रोता हमसे जुड़े हैं अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश कुमार और सन्नी भावसार। ये संदेश आया है संजय कॉलोनी खंडवा एमपी से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर का। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी। आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला।

बंछोर, बठेना, पाटन, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के श्रोता, अगला संदेश हमें भेजा है हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ने, गांव नथाना, पंजाब से। आप हैं ग्राम पजौनिया, जालौन, यूपी से, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। ये संदेश आया है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र के श्रोताओं का। आप हैं सोपान तायड़े, मोहन करांगले, जिगांव विदर्भ से हैं वसंतराव भोजने और पीएस नहावकर। तेलंगाना भोंगिर से संदेश भेज रहे हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान, सईमरा अजमीन गुड़िया। कनेरा मोहल्ला पटियाला के श्रोता हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। अगला संदेश हमारे पास आया है फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन का, सोंगा, मगरलोड, छत्तीसगढ़ से। आप हैं किशनगंज बिहार के श्रोता, रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और कीर्ति भारती। ये श्रोता हैं हमारे ग्राम ममना, हमीरपुर, बुंदेलखंड, यूपी के, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। कुंभारगली श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका और रोहिणी दले। पुनावले पुणे से हैं अजय सोनमने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनमने। सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू, डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी का संदेश हमें मिला है कृष्णा कॉलोनी हांसी से। भुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब के श्रोता हमसे जुड़े हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत। और आप हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार के श्रोता कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री। मित्रों, व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको सुनवाते हैं एक और फरमाइशी गीत।

धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश आप सबकी थी। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल ने इस गीत को सुनना चाहा। गम्हरिया जमशेदपुर से संदेश भेजा है विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल ने। अगले फरमाइश करता हैं महसौल सीतामढ़ी के अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम शमीम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से हैं मोहम्मद आसिफ खान और निगहत परवीन। ये संदेश हमारे पास आया है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल और निशा राठौड़ का। आप हैं भिलाई छत्तीसगढ़ के श्रोता मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। ये लांडू तेलंगाना से हमसे जुड़े हैं राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज, भानु राज, अमित खन्ना और इनकी माता जी। अगले फरमाइश करता है पद्मा टॉकीज नेपानगर एमपी के सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। ये संदेश हमें भेज रहे हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। अगले फरमाइश करता हैं हमारे सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान के रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित बेबी गर्वी और हिमाक्ष। चकला बाजार समाना शहर पंजाब के श्रोता हमसे जुड़े हैं पप्पू राजा, संगीता रानी, हसमुख लाल जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू, संजीव कुमार जिंदल और इनके सभी परिवारीजन। आप हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब के श्रोता राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। और ये संदेश हमें भेजा है कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी ने। आइए मित्रों, आपको अब सुनवाते हैं गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम का ये अंतिम फरमाइशी गीत।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब हैं।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे जिगरी दोस्त फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी ने गीत लिखा था, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी। फुटानी चौक नरहन स्टेट से लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पाराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित ने इस गीत को सुनना चाहा। अगले फरमाइश करता है नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से हैं संगीता जैन, सूरज जैन और PR जैन। आप हैं उत्तम नगर दिल्ली से गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश। अगला संदेश हमारे पास आया श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे का, धाड़ी नांदुरा महाराज।

राष्ट्र से। ये श्रोता हैं हमारे एटा रोड गंज नोटवारा यूपी के बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम शेख और डॉक्टर दबीरुल हसन, और आप हैं नांदेड़ महाराष्ट्र के श्रोता नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। इसी के साथ ही मित्रों, आज के गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: फ्लाइट पकड़ना रेस नहीं होनी चाहिए।
3: अब बिजनेस ट्रिप हो या वेकेशन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना इजी है। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और 24/7 कैब फैसिलिटी के साथ टाइम पे पहुंचना गारंटीड।
4: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: यूपी 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
6: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
5: यूपी 112 की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
6: शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ।
5: यूपी 112, नंबर एक, सेवाएं अनेक।
7: हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संपत लाल जोशी की गाई कुछ देशभक्ति परक लावनी। आइए इनके स्वर में कार्यक्रम की ये पहली लावनी सुनते हैं।

जौहर दिखा के पी और हमने तो सरेआम जवानी लुटा के पी। ए जी।

हर शख्स अपने सर से लपेटे हुए कफन, हर शख्स अपने सर से लपेटे हुए कफन, कानून की थी बेड़ियां तोड़े था मर्दोजन, मजनू था।

शख्स अपने सर से लपेटे हुए कफन, कानून की थी बेड़ियां तोड़े था मर्दोजन।

संग में बिठा के पी, मंदिर में और मस्जिद में गिरजा में जाके पी, मंदिर में और मस्जिद में गिरजा में जाके पी। एक देश के सेवक ने तो काबुल में जाके पी, एक देश के

जुल्मो सितम की आग में भारत था जल रहा, जलियां का सब्ज बाग था मिट्टी में मिल रहा।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: Guys, let's do a quick call.
8: अब बॉस को कैसे बताऊं मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है?
9: तू बॉस के साथ कॉल ले। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना अब इजी है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और हैसल फ्री कैब्स एंड बस सर्विस भी, तो फिकर नॉट।
6: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
10: ब्रज लोकगीत कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संपत लाल जोशी की गायी कुछ देशभक्ति पर लावनी। आइए इन्हीं के स्वर में एक और लावनी का आनंद लेते हैं।

ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संपत लाल जोशी की गाई कुछ देशभक्ति परक लावनी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनल

0: चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने कहा कि समारोह में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थियों की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के अनमोल योगदान को मान्यता देने जैसा है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी की FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तमिलनाडु पुलिस की अलग अलग इकाइयों ने आज फुल ड्रेस रिहर्सल की। संवेदनशील इलाकों में यातायात का मार्ग बदला गया है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के आसपास आने जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात संबंधी परामर्श जारी किया है। ये सुबह 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, अतिरिक्त समय लेकर चलें। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि यह दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बलिग्राम इलाके से पुलिस ने 7 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत केंद्र में भेज दिया है। इन 7ों को कल हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि वे कुछ महीने पहले भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और बाद में काम की तलाश में दक्षिण भारत चले गए थे। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 261 अंक गिरकर 77,819 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,336 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: फ्लाइट पकड़ना रेस नहीं होनी चाहिए।
3: अब बिजनेस ट्रिप हो या वेकेशन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना इजी है। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और 24/7 कैब फैसिलिटी के साथ टाइम पे पहुंचना गारंटीड। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: इस समय एक

बजकर 5 मिनट हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। आज संध्या 7 बजे आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आज संध्या 5:10 पर आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का सशस्त्र बलों के लिए विशेष संदेश का सीधा प्रसारण। इस कार्यक्रम को भी हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

हमारी इसी सभा में दिन में 1:15 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे हर घर तिरंगा और खुदीराम बोस बलिदान दिवस। आज इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे विष्णु प्रिया शर्मा की वार्ता, जिसका शीर्षक रहेगा भगवान शिव का प्रिय मास श्रावण मास। इसके अलावा आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत और घरेलू टिप्स हमारे इसी कार्यक्रम में। दिन में 1:45 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। अपराह्न 2:30 पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। तत्पश्चात अपराह्न 3:00 समापन होगा हमारी इस पहली सभा का।

संध्या 5:30 पर युवा साथियों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास। इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वीणा शर्मा द्वारा प्रस्तुत वार्ता भारतीय अस्मिता का प्रतीक तिरंगा ध्वज। इसके अलावा आप सुनेंगे कुछ फिल्मी नगमे हमारे इसी कार्यक्रम में।

0: ब्रज साहित्य कार्यक्रम में संध्या 6:15 पर आज आप सुनेंगे अनिल कुमार शर्मा का देशभक्ति परक काव्य पाठ। भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा और रात्रि 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुन पाएंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। इसके अलावा एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर और आपकी फरमाइश के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग आप सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: Guys, let's do a quick call.
2: अब बॉस को कैसे बताऊं मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है।
3: तू बॉस के साथ कॉल ले। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना अब इजी है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और हैसल फ्री कैब्स एंड बस सर्विस भी, तो फिकर नॉट।
4: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: समवेत स्वरों में आपने सुनी ये देशभक्ति परक रचना। रचनाकार थे आरसी प्रसाद सिंह। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: गाइस, लेट्स डू अ क्विक कॉल।
2: अब बॉस को कैसे बताऊं मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है?
3: तू बॉस के साथ कॉल ले। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना अब इजी है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और

0: Toll free cabs and bus service bhi. So fikar not.
1: Noida International Airport, where dreams take off.
0: फ्लाइट पकड़ना रेस नहीं होनी चाहिए.
1: अब बिजनेस ट्रिप हो या वेकेशन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना इजी है. यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और 24/7 कैब फैसिलिटी के साथ टाइम पे पहुंचना गारंटीड. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
2: अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम वनिता लोक. आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है रेशमा अग्रवाल.

गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलके करें, दुआ की बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। और बहनों, इन्हीं चंद लाइनों के साथ हमारी प्यारी प्यारी बहनों को आपकी सखी, आपकी सहेली रेशमा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों, आगामी स्वतंत्रता दिवस यानी कल के दिन 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, इस समय आप देख ही रही होंगी कि चारों तरफ देशभक्ति गानों की गूंज, देशभक्ति नारे व देशभक्ति की भावना से भरे हुए नागरिकों की रैली। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा देश ही देशभक्ति में हो गया है। और हो भी क्यों ना बहनों, यह दृश्य बहुत ही संघर्ष व त्याग बलिदान के बाद प्राप्त हुआ है। हमारे देश की आज़ादी में बहुत क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था तथा हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे क्रांतिकारियों को हमारा शत शत नमन। बहनों, इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक अमर महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कौन थे खुदीराम बोस और बहनों, कैसे इन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो बहनों इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी और पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बसु था। बचपन में ही माता पिता का साया उठ जाने के कारण उनकी बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया था। अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले खुदीराम बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अमर अध्यायों में है जो हमें देश के प्रति कर्तव्य और समर्पण की प्रेरणा देते हैं। भारत में अंग्रेज अत्याचारियों पर पहला बम फेंकने वाले युवा क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। यानी उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपनी यानी छोटी सी उम्र में ही अपना सब कुछ देश के लिए दांव पर लगा दिया। अमर क्रांतिकारी खुदीराम बोस का बलिदान दिवस हर साल 11 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन सन 1908 में भारत के सबसे कम उम्र के महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने बिहार की मुजफ्फर जेल में फांसी दी थी। 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर क्रूर ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड को खत्म करने की योजना बनाई थी। और इसी योजना के तहत उन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर एक बग्गी पर बम फेंका। लेकिन बहनों, उस समय उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 ब्रिटिश महिलाएं थीं जिनकी मौत हो गई। इनके साथ ही प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेजों के हाथ आने से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए। मात्र 18 वर्ष की आयु में भगवद गीता को हाथ में लेकर उसको

प्रणाम करते हुए वह आनंद मठ तथा वंदे मातरम व स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर देश के लिए सब कुछ देने वाले इस महान क्रांतिकारी ने अपने प्राण देश के नाम कर दिए। उनकी पंक्तियां थीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास मेरी भारत माँ को देने के लिए कुछ नहीं था सिवा मेरे प्राणों के, जिसे मैं दे रहा हूँ। कहा जाता है कि फांसी के फंदे की ओर बढ़ते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जिस तख्ते पर उनका जीवन समाप्त हुआ वहीं से उनकी अमर गाथा शुरू हुई। माँ भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जन जन में आजादी की अलख जगाने वाले महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस का उद्देश्य यश पाना नहीं था, उनका एक ही संकल्प था, मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करना, जो युगों युगों तक देश के युवाओं में शौर्य, स्वाभिमान व राष्ट्र सेवा की प्रेरणा शक्ति बनी रहेगी। उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं, देश के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम, अपने खून से जिस जमी को सींचा उन बहादुरों को मेरा सलाम। और बहनों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको सुनवा देते हैं एक देशभक्ति गीत।

देवों के देव महादेव को समर्पित पवित्रता और भक्ति से परिपूर्ण श्रावण मास का अपना ही आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने शिव भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय के जाप के माध्यम से भोलेनाथ की आराधना करते हैं। श्रावण मास केवल पूजा पाठ का महीना नहीं, बल्कि आस्था, संयम, प्रकृति और आत्म शुद्धि का संदेश देने वाला महीना है। चारों ओर हरियाली, वर्षा की फुहारें और मंदिरों में गूंजता हर हर महादेव का जय घोष वातावरण को शिवमय बना देता है। तो आइए इसी क्रम में पावन श्रावण मास में हम सब अपने मन को शिवमय करें और श्रद्धा के साथ शिव जी का स्मरण करते हुए सुनते हैं यह वार्ता, जिसका विषय है भगवान शिव का प्रिय मास श्रावण मास, और वार्ताकार हैं विष्णु प्रिया शर्मा।

पुनः पूरे वर्ष में 12 महीने और 6 ऋतुएं होती हैं। जाड़ा, गर्मी और बरसात के अलावा शिशिर, हेमंत और बसंत। इस प्रकार हर ऋतु अपना अपना प्रभाव अलग दिखलाती है। जहाँ श्री नारायण 4 महीने सहन करते हैं, तो वहीं भूत भावन भगवान भोलेनाथ वर्षा ऋतु के श्रावण मास में माता पार्वती के साथ कभी झूला झूलते हैं, तो कभी माता पार्वती उन्हें अपने हाथ से बिजिया घोटकर पान कराती हैं। ऐसा एक लोकगीत में भी मिलता है। शिव शंकर

लगी। इस प्रकार श्रावण के महीने को भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। यही कारण है कि इस महीने में महादेव की पूजा, अर्चना, आराधना का विशेष महत्व है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु सामर्थ्य अनुसार आक, धतूरा, बेलपत्र, फूलमाला, गंगाजल, बिजिया, दूध, दही, शहद, बूरा, गंगाजल आदि से उनका पूजन करते हैं। इस माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजन, अभिषेक आदि करते हैं। इस माह में की गई उपासना का विशेष महत्व है। इस माह में जो पूजा की जाती है उसका विशेष फल भक्तों को प्राप्त होता है। लेकिन आखिर शिव की उपासना के लिए यह मास विशेष क्यों है? भगवान शिव को श्रावण का महीना इतना प्रिय क्यों है? इसे लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें सनत कुमारों द्वारा भगवान शिव से श्रावण मास के प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान शिव ने इसका उत्तर दिया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपनी देह का त्याग किया, उससे पहले देवी सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पति पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती के रूप में देवी ने अपनी युवावस्था सावन के महीने में अन्न जल त्याग कर निराहार रहकर कठोर व्रत किया था। माँ पार्वती के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। तभी से भगवान महादेव को सावन का महीना अति प्रिय है। इसके अलावा सावन मास के लिए यह भी मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ देकर जलाभिषेक कर किया गया था, जिसमें सनत कुमार द्वारा भगवान शिव से सावन माह के प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान शिव ने इसका उत्तर दिया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपनी देह का त्याग किया, उससे पहले देवी सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पति पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने राजा हिमाचल, रानी मैना के घर जन्म लेकर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं, इसलिए भक्तगण इस महीने में उनकी भक्ति में लीन रहते हैं जिससे शिव को प्राप्त हो सके। सावन माह को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना गया है। इसके अलावा एक और कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार मार्कंडेय ऋषि के द्वारा लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन माह में ही घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की।

जिससे उन्हें ऐसी मंत्र शक्तियां प्राप्त हुई जिनके आगे यमराज भी नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने कहा है।

0: भगवान भोलेनाथ बड़े भोले भाले हैं, भूत भावन हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। श्रावण मास में भगवान शिव शंकर की जो लोग सच्चे मन से आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में सदगति को प्राप्त होकर वह सदा शिव में लीन रहने वाले जो भक्तगण होते हैं उन्हें भगवान शिव मोक्ष की प्राप्ति भी कराते हैं। ऐसे भोलेनाथ हैं हमारे श्री भोले शंकर शिव भगवान, जिनको श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय है। ऐसे भूतभावन भोलेनाथ को कोटि कोटि बंदन नमन करते हुए मैं अपनी इस वार्ता को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता भगवान शिव का प्रिय मास श्रावण मास। जानकारी दे रही थी विष्णु प्रिया शर्मा। बहनों, आइए हम सभी भी इस श्रावण मास पर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमारे मन को निर्मल करें, हमारे विचारों को पवित्र करें, हमारे परिवार में सुख शांति दें और हमें समाज एवं राष्ट्र की सेवा करने की शक्ति प्रदान करें। सावन की हर बूंद हमें यही संदेश दे, मन में शिव, वाणी में शिव, कर्म में शिव और जीवन में शिव शिवत्व। तो आइए पूरे भाव से कहें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।

तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है, हर घर तिरंगा। जी हाँ बहनों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभियान की जो केवल घरों पर तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भारतीय के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत करता है। और तभी तो सभी कहते हैं कि हर घर तिरंगा। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। इसके तीन रंग हमें जीवन के तीन महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, केसरिया साहस और त्याग का, सफेद शांति और सत्य का, तथा हरा समृद्धि और प्रतीक प्रकृति का प्रतीक है। इसके मध्य में स्थित अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। हर घर तिरंगा अभियान हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति केवल सीमा पर खड़े सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, देश के प्रत्येक नागरिक का अपना कर्तव्य है कि हम अपने देश को स्वच्छ रखें, पर्यावरण की रक्षा करें, ईमानदारी से अपने कार्य करें, साथ ही साथ जरूरतमंदों की सहायता करें और देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करें। जब किसी घर की छत पर तिरंगा लहराता है तो वह केवल एक ध्वज नहीं होता है, वह उस परिवार की देश के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक बन जाता है। आज़ादी हमें बहनों सहजता से नहीं मिली, असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन, अपना परिवार और अपना भविष्य देश के नाम कर दिया। इसलिए जब हम तिरंगे को सम्मान के साथ देखते हैं तो हमें उन सभी वीरों के बलिदान को भी स्मरण करना चाहिए। तो आइए इस हर घर तिरंगा अभियान को केवल एक आयोजन न बनाएं, बल्कि इसे अपने जीवन में राष्ट्र सेवा की भावना से जोड़ें। घर घर तिरंगा हो, मन मन में भारत हो, हर दिल में देशभक्ति हो और हर कदम राष्ट्र हित में हो। और इसी के साथ बहनों, हमारी घड़ी लगातार इशारा कर रही है, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। तो फिर मिलते हैं आपसे इसी समय पर इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए रेशमा अग्रवाल को। नमस्कार।

अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थीं वनिता लोक। आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थीं रेशमा अग्रवाल। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अमर प्रेम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से संवारा राहुल देव बर्मन ने। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का नगमा। साहिर लुधियानवी का गीत है, संगीत रवि का।

फिल्म संगीत का आनंद आप इस समय आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से ले रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे अपना देश फिल्म का गीत। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले अंग्रेजी में और उसके बाद हिंदी में।

0: भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयं अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
3: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्म

0: कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई सौ जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी समेत कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
3: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
4: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की

0: केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
2: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
1: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंग नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।
5: Guys, let's do a quick call. अब बॉस को कैसे बताऊं मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है।
6: तू बॉस के साथ कॉल ले। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना अब इजी है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और हैसल फ्री कैब्स एंड बस सर्विस भी, तो फिकर नॉट।
7: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
4: लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
3: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
3: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
3: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
2: श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
3: श्रोताओं, ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
2: जी।
3: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
2: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धो और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
3: तो श्रोताओं, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
2: जी।
3: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
2: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया
3: जी। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं, आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
2: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है
3: जी। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था। आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
2: श्रोताओं, एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न, आज ही की जानकारी से, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
2: इस कार्यक्रम में भारत

0: के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
1: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
2: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर लो।
3: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्ट्री पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
2: इसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बैरिस्ट्री की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
3: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूं।
2: जैसे तुम्हारे मर्जी।
1: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
4: अरे भाई, अरे भाई कौन हो तुम? ये घर घर जा

0: कर क्या प्रचार कर रहे हो?
1: हाँ। जी मैं दादा भाई हूँ।
2: दादा भाई,
1: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियां स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
2: अरे लड़कियां पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
3: अरे लड़कियां घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना।
4: अरे जाओ कुछ और काम करो।
1: सुनिए सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
5: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने

0: और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगीं। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
1: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए, और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
0: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
1: मेरे साथियों साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
2: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
1: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
3: लेकिन वो कैसे?
1: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा, और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
4: लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
5: हाँ? और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
4: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
1: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाएं जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
0: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई, और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
1: मैं कम बोलने वाला आदमी क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूं? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी, इसलिए भी मैं कम बोलता।
2: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
3: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
4: वल्लभ वल्लभ।
5: हाँ।
4: अरे तुमने कुछ सुना
5: क्या? क्या हुआ घनश्याम?
4: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
5: हाँ?
4: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
5: क्लास से निकाल दिया?
4: हाँ।
5: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
4: राम जी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
5: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
4: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
6: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
4: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
6: निकल जाओ मेरी क्लास से, और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
5: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
4: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
5: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है, वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहां से लाएंगे भाई?
4: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के 4 आने का ही सवाल है।
5: सवाल 4 आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिख सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
4: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
5: इसीलिए तो कहता हूं सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
4: ठीक है,
5: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
4: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में ना जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
5: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
4: क्या?
5: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, ना इधर उधर भटकेंगे ना शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो, और सुनो बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करें।
4: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
5: अरे भाई इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
4: हाँ वल्लभ ये ठीक है।
2: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया।

0: आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
1: इस घटना से वल्लभ भाई के दो प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
0: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
2: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
3: हाँ भाई, इरादा तो पक्का है।
2: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
3: हाँ, काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी, और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
2: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
3: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। वही खेड़ा सत्याग्रह वाले, बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं। अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो, वो आ ही गए।
4: क्यों दिनेश भाई, कैसे हो, यहाँ का क्या समाचार है?
3: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
4: नहीं भाई, मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
3: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
4: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयंसेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं।
3: जी,
4: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयंसेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
3: उससे क्या होगा
4: भाई, अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयंसेवक चाहिए या नहीं?
3: हाँ,
4: ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
0: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
1: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार

0: से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
1: मैं आप लोगों को यह साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े-बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
2: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
1: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी। लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
2: नहीं।
1: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
2: नहीं।
1: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
2: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
0: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी, और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।
3: जब हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है,
0: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:10 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का सैनिकों के नाम संदेश।
1: मेरे बहादुर सैनिक बहनों और भाइयों, हमारा देश कल अपनी स्वतंत्रता का 80वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं सशस्त्र सेनाओं में सेवारत और सेवानिवृत्त सभी सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को अपनी और समस्त भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन परिवारों के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके त्याग और धैर्य के कारण ही हमारे सैनिक पूरी निष्ठा के साथ मातृभूमि की सेवा कर पाते हैं। साथियों, आज से 79 वर्ष पूर्व हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अथक संघर्ष, त्याग और बलिदान के बल पर हमें आजादी का अमूल्य उपहार दिया है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरोजनी नायडू, रानी गडिनलू और असंख्य ज्ञात अज्ञात वीरों के सपनों और बलिदानों ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। उसके बाद से ही उस विरासत को सुरक्षित रखने और भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करने का दायित्व तो आज हमारे सशस्त्र बलों के मजबूत कंधों पर है। और साथियों, आपका अनुशासन, आपका साहस, आपका समर्पण और राष्ट्र के प्रति आपकी अटूट निष्ठा प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। विपरीत परिस्थितियों में भी आपका अडिग संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित वातावरण में अपने सपनों को साकार कर सके। राष्ट्र आपकी इस अद्वितीय सेवा, त्याग और समर्पण के लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में वैसे तो मैं समय समय पर अलग अलग अवसरों पर आप सबसे मिलता ही रहता हूं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी से कुछ बातें साझा करना हमेशा एक अलग अनुभव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन हम हमारी आर्म फोर्सेज के किसी एक यूनिट के बारे में ही बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम भारत के डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट को हॉलिस्टिक नजरिए से देख रहे होते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत ने आजादी के इन 80 वर्षों में जो प्रगति की है वह अपने आप में एक प्रेरक गाथा है। लेकिन यह कहानी तब और सुखद हो जाती है जब हम इसमें भारत के रक्षा क्षेत्र की यात्रा को देखते हैं। साथियों, 1947 से लेकर आज तक हमारे रक्षा क्षेत्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है और हम सब इसके साक्षी हैं। लेकिन आज

स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर मैं आपसे उस इतिहास की नहीं बल्कि वर्तमान की और आने वाले भविष्य की योजनाओं पर बात करना चाहूंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उनमें भी पिछले 12 वर्षों में आप सबने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारे प्रयासों ने रक्षा उत्पादन को नई दिशा दी है, हमने आयात पर अपनी निर्भरता कम की है और स्वदेशी निर्माण को हमने अभूतपूर्व गति प्रदान किया है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी पिछले एक दशक में हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 4 गुना बढ़ चुका है। यह पिछले एक दशक में हुए स्ट्रक्चरल चेंज का प्रमाण है। इस कुल उत्पादन में रक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग 76% हिस्सेदारी रही, जबकि निजी क्षेत्र ने 24% का योगदान दिया, जो पिछले वर्ष के 22% से अधिक है। निजी क्षेत्र की यह बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि रक्षा क्षेत्र में बिजनेस इन्वायरमेंट लगातार बेहतर हो रहा है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावशाली प्रमाण हमारा रक्षा निर्यात है। वर्ष 2013-14 में महज 686 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट आज वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी लगभग एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट ने 5,500% से भी अधिक की छलांग लगाई है। आज भारत में 145 डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं और हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स 80 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ सरकार ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यह लक्ष्य जरूर प्राप्त करके रहेंगे। साथियों, रक्षा क्षेत्र में इतना बड़ा परिवर्तन बिना किसी ठोस निवेश के संभव नहीं था। हमने रक्षा बजट लगातार बढ़ाया है। हमारा डिफेंस बजट वर्ष 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर 94,588 करोड़ रुपए से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी हमारा फोकस लगातार बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट जहां 15,283 करोड़ रुपए हुआ करता था, वह 2026-27 में 90% बढ़कर 29,100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सारे आंकड़े भविष्य की रक्षा तकनीकों में भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शा रही है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में इस निवेश का लाभ हमारे पूरे रक्षा औद्योगिक परिदृश्य को भी मिल रहा है। आज देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए 16 सार्वजनिक उपक्रम, 462 लाइसेंसी रक्षा कंपनियां और लगभग 17,000 MSMEs रक्षा निर्माण से जुड़ी हैं। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, साथ ही अदिति जैसी योजना के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के लिए 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। साथियों, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले एक वर्ष में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 8.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान किया है। यह अपने आप में हमारे रक्षा आधुनिकीकरण के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश है। इसके अंतर्गत भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को और भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे। ये निर्णय हमारे रक्षा

क्षेत्र को भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम है। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को गति देने के लिए हमने रक्षा खरीद प्रक्रिया में भी बुनियादी सुधार किए। 2026 में डिफेंस सर्विसेज के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में व्यापक संशोधन कर फील्ड कमांडर्स के अधिकार 100% तक बढ़ा दिए गए। इससे कॉन्ट्रैक्ट्स का क्रियान्वयन तेज होगा और हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशीकरण से जुड़े वित्तीय अधिकार भी दोगुने कर दिए गए हैं, जिससे 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा खरीद को रेवेन्यू रूट के माध्यम से गति मिलेगी। साथियों, हमारी सेनाओं ने बढ़ चढ़कर आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में भाग लिया है। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक के बाद एक कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। वर्ष 2025 और 2026 में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के तहत 4 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी और INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया। ये सभी स्वदेशी युद्धपोत हमारी समुद्री क्षमताओं और सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप का भी कमीशन होना ऐतिहासिक रहा, जो 60% से अधिक स्वदेशी कंटेंट वाला भारत का पहला स्वदेशी पोल्यूशन कंट्रोल वेजल है। भारतीय वायुसेना के लिए भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक संयंत्र में LCA तेजस मेक 1A की तीसरी और HTT-40 की दूसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू की गई है। हाल ही में इस नई फैसिलिटी में बने पहले LCA मेक 1A को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। एमका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी देना भी हमारे इसी रणनीतिक कदम का उदाहरण है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को समान भागीदारी का अवसर मिलेगा। फरवरी 2026 में टाटा एडवांस सिस्टम्स की एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन भी भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम की बढ़त को दिखा रहा है। साथियों, हमारी आर्मी को भी अत्याधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने के लिए हमने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लगभग 975 करोड़ रुपए की लागत से T-72 और T-90 टैंक्स के लिए ट्रॉल असेंबली की खरीद के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ये अत्याधुनिक माइन क्लियरिंग सिस्टम्स युद्ध के दौरान टैंकों के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार करेंगे, जिससे हमारी आर्मर कोर की मोबिलिटी, सर्विवेबिलिटी और कंबैट इफेक्टिवनेस में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथियों, रक्षा क्षेत्र के इस बदलते परिवेश में DRDO और हमारी सेनाओं ने भविष्य की युद्ध तकनीकों में भारत को अग्रणी पायदान पर ला खड़ा किया है। हमने अपनी पहली टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जो पारंपरिक हथियारों को प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स में बदलने की क्षमता रखती हैं। MIRV तकनीक से लैस एडवांस्ड अग्नि मिसाइल के परीक्षण ने हमारी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को नया आयाम दिया है। इसी क्रम में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल RUDRAM-2, एयर टू सरफेस मिसाइल, नेवल एंटी शिप मिसाइल SR और पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के सफल परीक्षणों ने हमारी मारक क्षमता को अभूतपूर्व मजबूती दी है। भविष्य की तकनीकों में हमने हाइपरसोनिक क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाई है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर के 1200 सेकेंड से अधिक के सफल परीक्षण ने भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एयर डिफेंस में हमारी शक्ति स्वदेशी कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के पहले सफल परीक्षण से और बढ़ गई है, जिसके सभी सिस्टम पूर्णतः स्वदेशी हैं। साथियों, आधुनिकीकरण के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करना भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ 125 रणनीतिक आधारभूत संरचनाएं

0: राष्ट्र को समर्पित किए, जो बीआरओ के इतिहास की सबसे बड़ी एकल उपलब्धि है। लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में बनी 28 सड़कें और 93 पुल हमारी सेनाओं की तेज आवाजाही को सुनिश्चित करेंगे। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों से हमारा जुड़ाव और मजबूत हो रहा है। हमारे सैनिकों का सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ाव पहले की तुलना में अब और ज्यादा बढ़ रहा है। सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर जगह हमारी सेनाएं फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य करती हैं। देश में कहीं भी जब कभी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आती है तो हमारी सेनाएं वहां तुरंत पहुंचकर राहत बचाव का कार्य करती हैं। इसलिए साथियों, हम आधुनिकता या आत्मनिर्भरता के जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं उसका मुख्य आधार हमारी सेनाएं, हमारे सैनिक और उनके परिवारजन ही है। हमारी सेनाएं हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतिबिंब है। हम अपने वेटरन्स के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पिछले 5 वर्षों में यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम बजट में 300% की वृद्धि हमारी इसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के अंतर्गत पिन्यूरी ग्रांट 4000 से बढ़कर 8000 रुपये, एजुकेशन ग्रांट 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये और मैरिज ग्रांट 50000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। यह बदलाव साफ तौर पर हमारे सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखा रहे हैं। साथियों, आज जब हम रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं तो मुझे आपसे यह कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि भारत का रक्षा क्षेत्र भारत की बेटियों के लिए भी सम्मानजनक रास्ते खोल रहा है। 2026 में हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब नेशनल डिफेंस एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पहली महिला कैडेट्स ने सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। 17 महिला अधिकारियों का यह जत्था साबित करता है कि साहस और नेतृत्व किसी एक जेंडर की सीमा में नहीं बंधे। हमारी नारी शक्ति की इसी भावना का विस्तार समुद्र प्रदक्षिणा भी है, जहां तीनों सेनाओं का पहला ऑल वेमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन हुआ, जिसमें IASV त्रिवेणी पर सवार 9 महिला अधिकारियों ने 314 डेज में 4 महासागरों में 25,500 नॉटिकल माइल्स की यात्रा पूरी की। यह अदम्य साहस नारी शक्ति के नए भारत का जीवंत प्रतीक है। साथियों, इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए बहुत ही विशेष है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम सब इस अवसर को एक उत्सव के रूप में मनाएं। यह केवल एक वर्षगांठ नहीं बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का उत्सव है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और हम सबके अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा की ऊर्जा को ऐसे ही बनाए रखेगा। अंत में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के वीर जवानों, सम्मानित पूर्व सैनिकों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनेंगे और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपना सार्थक योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का सैनिकों के नाम संदेश सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए वंदे मातरम के 150 वर्ष और देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ अनुभा रोहतगी की विशेष बातचीत।
1: विवेक जी, हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है और ये राष्ट्रीय पर्व उसके जरिए मनाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में नागरिकों में देशभक्ति की जो भावना जगाने के लिए और राष्ट्रीय एकता

0: और भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने में हर घर तिरंगा अभियान ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
1: हर घर तिरंगा अभियान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि ये भारत के सभी नागरिकों को मौका देता है कि वह अपनी देशभक्ति को भारत के तिरंगे के साथ खड़े होकर अभिव्यक्त कर पाए, और इस अभिव्यक्ति का जो पूरा उत्सव है वो हर घर तिरंगा के रूप में हर वर्ष मनाया जा रहा है। और इस वर्ष उसमें खास उत्साह है क्योंकि इस बार हर घर तिरंगा के साथ जो वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए हैं उसको भी हम साथ में मना रहे हैं। तो भारत के सभी नागरिक, सभी युवा, सभी लोग मिलके तिरंगे के साथ साथ वंदे मातरम का उत्सव भी मना रहे हैं। और इस बार जो सेल्फीज अपलोड हो रही हैं उनके साथ साथ जो सर्टिफिकेट हर घर तिरंगा के पोर्टल से जाता है उसमें वंदे मातरम के लिरिक्स और वंदे मातरम का गायन भी जा रहा है, और नागरिकों को यह भी सुविधा है कि वंदे मातरम का गायन करके भी, रिकॉर्ड करके भी वो उस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस बार बहुत अच्छा हमें प्रतिसाद मिला है जो नागरिक भाग ले रहे हैं, और पहले दो दिन में ही 3 करोड़ से ज्यादा जो भागीदारी हमारे पोर्टल पे इस कैंपेन में हो गई है, और इस बार रिकॉर्ड कैंपेन रहेगा जो पिछले सभी 5 सालों में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उत्सव इस बार हर घर तिरंगा के कैंपेन में बनेगा।
0: आपने भी जैसा कहा कि इस साल हर घर तिरंगा अभियान जो है उसका खास महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की और हमारी पहचान से जुड़े ये दो प्रतीक हैं। इन दोनों प्रतीकों का एक साथ आना, आप इसे कैसे देखते हैं?
1: देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। असल में वास्तविकता यह है कि इस बार तीनों प्रतीक साथ होंगे, भारत का तिरंगा, भारत का नेशनल एंथम जनगण मन, और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तीनों को सेलिब्रेशन में एक साथ सम्मिलित किया जाएगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किला की प्राचीर पे आएंगे तो सबसे पहले वंदे मातरम का गायन होगा, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी झंडा वंदन करेंगे, और झंडा वंदन के तुरंत बाद जब तिरंगा फहराया जाएगा तो नेशनल एंथम का गायन होगा। तो ये जो तीनों भारत के प्रतीक हैं, जो भारत की सॉवरेनिटी के, भारत के नागरिकों के स्वाभिमान के, और भारत की स्वतंत्रता के, और भारत के जो विश्व में जो भारत का गौरव है उसको स्थापित करने के जो तीनों प्रतीक हैं, तीनों प्रतीक एक साथ पहली बार इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में इकट्ठे मनाए जाएंगे।
0: संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम को गाने के लिए एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल अपलोड किया है। हम जानना चाहेंगे ये ट्यूटोरियल क्या और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई?
1: वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका विभाजन हो गया था। इस राष्ट्रीय गीत के सिर्फ दो ही जो पहले पैरा थे उसका गायन देश भर में होता था, और जो बाकी का राष्ट्रीय गीत था उसका गायन भारत में नहीं होता था। इस बार जब वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का नेतृत्व किया कि हम वंदे मातरम का पूरा गायन करेंगे और उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है उसका केवल गायन नहीं करेंगे, तो चूंकि पूरे वंदे मातरम का गायन होना है इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसके जो पूरे वंदे मातरम के लिरिक्स हैं और उसका गायन का स्वरूप है उसका सभी नागरिकों को पता हो, इसलिए उसका ट्यूटोरियल हमने इस पोर्टल पे रखा है और ये सुविधा दी है कि नागरिक अभ्यास कर सकें, उसके पूरे लिरिक्स को याद कर सकें और उसको अभ्यास कर सकें वंदे मातरम का गीत का, और जिस सुर में और जिस संगीत में सही मायने में वंदे मातरम का गायन होना है उसको सीख के वो गायन करें, उसका गायन सार्वजनिक भी हो और उनका गायन जो है वो अपने स्तर पे भी करके उसको अपलोड पोर्टल पे करें।
0: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भारत के नागरिकों और खासकर भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना को और कैसे गहरा कर सकता है?
1: देखिए, जो हर घर तिरंगा का कैंपेन है और वंदे मातरम का गायन है उससे जो गर्व का अनुभव होता है और जो उससे सामाजिक सामंजस्य और सामाजिक एकता का अनुभव होता है और देश के प्रति और देश की जो अस्मिता है उसके प्रति जो गौरव की भावना होती है और भारत माता के प्रति जो सम्मान की भावना है उससे नागरिकों में अपने देश की, अपने कौम की, अपने समाज की, अपने आप को आगे ले जाने की जो भावना उत्पन्न होती है उस सब का प्रतीक वंदे मातरम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का जो पूरा जो स्वरूप आया वो वंदे मातरम से आया और वंदे

0: मातरम ही भारत के जो तिरंगा है, जब झंडा भारत का बनना शुरू हुआ स्वतंत्र भारत का, उसमें भी वंदे मातरम का योगदान हुआ। असंख्य भारत के जो स्वतंत्र वीर हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उनके लिए वंदे मातरम ही वो नारा था जिसके ऊपर उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया। तो इसलिए वंदे मातरम एक पूरा स्वरूप है जो देश को गर्व प्रदान करता है। देश की स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को हम सादर याद करते हैं, और देश के भविष्य में और देश को आगे ले जाने के लिए जो भावना होनी चाहिए, वो भावना हमें वंदे मातरम के गायन से आती है।
1: हम सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का हालिया सोशल मीडिया पोस्ट देखा, जिसमें उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री का वीडियो नागरिकों को क्या संदेश देता है, और इस अभियान को गति देने में प्रधानमंत्री की अपील कितनी महत्वपूर्ण है?
0: जो हर घर तिरंगा का अभियान है, उसका नेतृत्व पूरे प्रारंभ से ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। उन्हीं के आह्वान से ये पूरी कैंपेन शुरू हुई है, और इस बार भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है पूरे देशवासियों को कि वो हर घर तिरंगा में बढ़ चढ़कर भाग लें, उसका बहुत बड़ा जो रिस्पॉन्स है वो हमारे देश के नागरिक दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, इस बार के हर घर तिरंगा कैंपेन में जो पार्टिसिपेशन है वो पिछले बार से भी बहुत ज्यादा है, बहुत उत्साहपूर्ण है, और साथ साथ वंदे मातरम का गायन भी हो रहा है, और वंदे मातरम का पूरा गायन हो रहा है, और उसका जो स्वरूप है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें कानूनी तौर पे जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये सारी चीजें भारत के गौरव को बढ़ाने वाली हैं, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना है उसमें देशवासियों का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने वाली है।
1: हम क्योंकि नागरिकों के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो इस अभियान को सफल बनाने में आप आम जनता की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: देखिए, ये तो जो अभियान है ये है ही भारत के आम लोगों का और देशवासियों का, उन्हीं की भूमिका है, उन्हीं का भागीदारी है जिससे ये अभियान सफल हो सकता है। और ये केवल अभियान नहीं है जो हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के दिन पे मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के सप्ताह में मना रहे हैं। ये अभियान ऐसा है जो सतत चलने वाला है, जो भारतीयों की आत्मा और भारतीयों के जो कर्म है उनको डिटरमिन करने वाला है। इसलिए भारतीयता की भावना, भारत के ऊपर गर्व की भावना, अपने राष्ट्र के ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने की भावना बनाने के लिए ये अभियान है। और ये जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए और उसकी एक मजबूत जो नींव है उसको स्थापित करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को, युवा वर्ग को बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए।
1: ये तो हम सब जानते हैं कि ये अभियान जो है हर घर तिरंगा, ये नागरिकों को अपने घरों और कार्यस्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन बहुत से लोग अब भी राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से फहराने के, उसको संभालने के नियम कानून नहीं जानते हैं। तो क्या संस्कृति मंत्रालय ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि भारत के ध्वज संहिता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ खास अभियान चलाया है या कोई खास कदम उठाए हैं?
0: देखिए, अधिकार अपने घर पे झंडा फहराने का ये जो कॉलोनियल लॉ था और कॉलोनियल रूल्स थे उसमें नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में जब इस बात पे चर्चा हुई कि हर भारतीय नागरिक को अपने घर पे और कार्यस्थल पे तिरंगा लहराने का अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार मिला, और उस अधिकार मिलने के बाद अब सारे भारतीय इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने घरों में, अपने कार्यस्थल में और अन्य स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर जो भारत के तिरंगा को लहराने में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि हम तिरंगे का पूरा सम्मान करें और फ्लैग कोड का पालन करें। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है उसमें डूज एंड डोंट्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं, और ये बताया गया है कि क्या फ्लैग कोड के रूल्स हैं और किस तरह से हम तिरंगे को ससम्मान हम अच्छे से फहरा सकते हैं, और फहराने के बाद जो उसका सम्मान होना चाहिए जब हम उसको उतारें वो कैसा होना चाहिए, जो तिरंगा झंडा है उसका स्वरूप, उसका साइज, जिस मटेरियल पे तिरंगा है वो कैसा मटेरियल होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने डूज एंड डोंट्स में दी हैं। और हमेशा ये प्रयास रहा है कि कैंपेन के साथ साथ हम

0: सम्मानपूर्वक अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं और सम्मानपूर्वक उसको रखें, ये सारे प्रावधान भी हमने अपने स्तर पर करने का प्रयास किया है।
1: ये अभियान अभी 17 अगस्त तक चलेगा, तो हम जानना चाहेंगे कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा वो क्या विभिन्न कार्यक्रम हैं जो इस पूरे सप्ताह में आप लोगों ने आयोजित किए।
0: ये केवल संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ही आयोजन नहीं कर रहा, भारत सरकार के सभी विभाग

0: भारत सरकार के सभी विभाग और देश के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज भी बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं, तो जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, स्कूलों में कॉलेजेस में कार्यक्रम हो रहे हैं, जो हमारे CAPF और आर्मी हैं उनके बैंड्स का प्रदर्शन पूरे देश भर के नगरों में और गांवों में हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनमें कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन होगा 17 तारीख को, बाइक रैली का आयोजन हुआ जो संस्कृति मंत्रालय ने किया। इसके अलावा जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे है उसका आयोजन हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि पूरे भारतवर्ष को ये याद रहे कि जो हमारे ऊपर विभीषिका आई, हमारा अब ये कर्तव्य है कि ऐसी विभीषिका पुनः ना हो, उसके ऊपर हम काम करें। और ये पूरे भारत का उत्सव है जिसमें सभी प्राइवेट संस्थाएं, सभी जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, उनको सम्मिलित किया गया है और विभिन्न प्रकार के आयोजन हर स्तर पर हो रहे हैं।
1: जैसा भी आपने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के जो समारोह है उसमें विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो 14 अगस्त को यानी कि आज मनाया जा रहा है, तो हर भारतीय और खासकर युवा पीढ़ी के लिए इस दिन को ध्यान में रखना, इस दिन को याद करना क्यों महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, जब भारत की स्वतंत्रता आई उसके साथ साथ ये विभीषिका भी आई जिसमें भारत को धर्म के आधार पर बांटा गया, और जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ तो उसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग उसमें मारे गए और लाखों लोग डिस्प्लेस हुए। ये समाज के लिए एक सबक है और देश के लिए एक सबक है कि एकता और सामाजिक सामंजस्य इस देश को आगे बढ़ा सकता है। और ऐसा सबक हमें सीख लेना चाहिए कि जब देश के विभाजन को हमने होने दिया और इस प्रकार की भावनाओं को विभाजित हमने होने दिया और ऐसी व्यवस्था में हम रहे कि हमारे देश को विभाजन की विभीषिका का दंश सहना पड़ा, अब हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि ऐसा दंश पुनः ना हो और हमने जो विभीषिका सही ऐसा मौका दोबारा ना आए। इसलिए सारे समाज को, सारे देशवासियों को अपने आप को देश के लिए समर्पित करके, भारत के लिए समर्पित करके, भारत की एकता अखंडता और भारत को विकसित बनाने में अपने आप को लगा के ही हम ये सबक सीख सकते हैं कि आगे हम ऐसी कभी भी इस प्रकार की दुर्घटना अपने देश में नहीं होने देंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस अवसर पर यानी कि विभीषिका स्मृति दिवस पर लोगों को श्रद्धांजलि दी और इस श्रद्धांजलि में उन्होंने ये भी कहा, मैं उनके शब्द दोहरा रही हूं, इससे उबरते हुए लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा किया, मुश्किलों को कामयाबी में बदला और हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी जिंदगी का सफर हमें इंसानी जज्बे की ताकत की याद दिलाता है। विवेक जी, ऐसे समय में जब भारत का ध्येय है 2047 तक विकसित भारत बनना, प्रधानमंत्री का ये संदेश कितना प्रासंगिक है जो उन्होंने इस विभीषिका से गुजरे हुए लोगों की जज्बे की जब बात करते हैं, वो कितना प्रासंगिक है?
0: वो प्रासंगिक इसलिए है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार की कठिनाई और जिस प्रकार की समस्या जो लोग विस्थापित होकर आए उन्होंने सही और फिर भी उन्होंने तरक्की का रास्ता अपनाया और भारत के विकास में वो योगदान उन्होंने दिया और दे रहे हैं, उसी प्रकार पूरे समाज को मेहनत से और अपनी भावना है तरक्की की उससे आगे बढ़ने से हम भारत को विकसित भारत की तरफ ले जा सकते हैं। तो हमारे लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए कि जो कठिनाइयां हैं वो हमें रोक नहीं सकती, कठिनाइयां हमारे लिए प्रेरणा बनेंगी और हम उन कठिनाइयों को, उन चुनौतियों को पार करके अपने भारत को, अपने देश को विकसित बना पाए, इस हेतु अगर हम कार्य करेंगे तो हम सफल हो सकते हैं।
1: हर घर तिरंगा अभियान 2026 के अंतर्गत एक प्रमुख पहल हुई है सूर्य पथ तिरंगा, हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं।
0: देखिए, भारत का तिरंगा पूरे विश्व भर में 15 अगस्त को फहराया जाएगा। भारत के सभी जो एम्बेसीज हैं, मिशन्स हैं पूरे विश्व में और जो हमारे भारतीय लोग जो अलग अलग देशों में रहते हैं वो सब भारत का तिरंगा फहराएंगे। पर ये तिरंगा जब फहराया जाएगा तो समय का अंतर है, जब सूर्य का उदय ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, जो पूर्वी हेमिस्फीयर है क्योंकि ईस्ट से सूर्य का उदय होता है, उस समय भारत में अभी अंधेरा होगा। तो जो सूर्यपथ तिरंगा है वो सूर्य के पथ के साथ साथ

0: तिरंगा के फहराने को हम मनाएंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे, तो पूरा ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर से जब तिरंगा फहराया जाएगा उसका सम्मान होगा, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे तिरंगा भी अलग अलग विश्व के भागों में अपना स्वरूप लेता जाएगा और फहराता जाएगा, और ऐसे चलता चलता वो भारत में आएगा और फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। उस पूरी प्रक्रिया को सूर्य पथ तिरंगा का नाम दिया गया है। भारत के तिरंगे को जो हम सम्मान देते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन और जो हम सैल्यूट करते हैं, वो सैल्यूट भारत के तिरंगे को वो पूरे विश्व भर में सूर्य के पथ के साथ साथ होता हुआ पूरे विश्व को दिखेगा और बताया जाएगा।
1: सूर्य पथ तिरंगा के अलावा भी क्या 2022 में जब ये हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ था तो तब से अब तक इस बार जैसे हमने बात अभी करी कि सूर्य पथ तिरंगा एक नई पहल है, उसके अलावा क्या बदलाव हुए इन 5 सालों में और उनका कितना असर आपको दिखाई दे रहा है?
0: जब हर घर तिरंगा अभियान चला था तो तब ये चिंता होती थी कि हमें उतने तिरंगे झंडे मिल पाएंगे जो हम अपने नागरिकों को दे पाए, तो तिरंगे का प्रोक्योरमेंट और तिरंगे की सप्लाई चेन है उसको बनाने का चैलेंज था। पर आप देखें कि 5 साल की कैंपेन के बाद अब वो चैलेंज खत्म हो गया है। हर नागरिक अपना तिरंगा खुद ढूंढ रहा है, ले रहा है और अपना रख रहा है और उसको फहरा रहा है। दूसरा, पहले जो स्टेक होल्डर्स थे, जो पूरा कम्युनिकेशन का नेटवर्क था वो बनाया गया, अब वो नेटवर्क पूरा कंप्लीट बन गया है। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं वैसे ही पूरा देश एक्टिवेट हो जाता है। सभी संस्थाएं, सभी वर्ग के लोग, सभी एसोसिएशंस, सभी राज्य, सभी सरकारें, सभी नगर पालिकाएं, सभी पंचायतें खूब धूमधाम से हर घर तिरंगा में सम्मिलित हो जाते हैं। तीसरा, जो सबसे बड़ा अंतर आया है कि जो भावना है तिरंगे के प्रति और जो सम्मान है वो एकदम से उसमें बहुत विस्तार हुआ है। तो हर छोटा बच्चे से लेके सबसे बड़ी उम्र के नागरिक भी तिरंगे को लेके सम्मान से इन दिनों में हर घर तिरंगा कैंपेन में सम्मिलित होते हैं। फिर हर वर्ष हर घर तिरंगा कैंपेन में कुछ ना कुछ नया जुड़ता गया, जैसे इस बार वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ को जोड़ा गया। तो इस तरह से ये जो कैंपेन है इसका विस्तार होता जा रहा है और आने वाले वर्षों में और अधिक विस्तार इस कैंपेन का होगा, जो भारतीयों को उनकी जो देश के प्रति उनके कर्तव्य हैं और जो देशभक्ति के प्रति जो सम्मान है उसको हम आगे आने वाले समय और अच्छे से बढ़ाते रहेंगे। और ये ऐसा कैंपेन है जो भारत को विकसित भारत बनाने में एक बड़ा योगदान कर पाएगा।
1: आपने बताया कि ये जो कैंपेन हर घर तिरंगा जो पोर्टल पे, संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पे जो इसके प्रतिक्रिया आ रही है बहुत ही उत्साहवर्धक है, उसमें कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं, कुछ ऐसी रिएक्शन जो आप हमसे साझा करने चाहें जो बहुत अलग हैं या जिनसे बहुत एक उत्साह बढ़ता है?
0: विभिन्न प्रकार के आयोजन जो अलग अलग देश के हिस्सों में हो रहे हैं और उनको जो अपलोड वहाँ के नागरिक और वहाँ के एसोसिएशंस कर रही हैं वो बहुत प्रेरणादायी आयोजन हो रहे हैं। मैंने आज देखा भोपाल में लेक के ऊपर एक बहुत अच्छी उन्होंने संरचना बना के हर घर तिरंगा को सेलिब्रेट किया। लद्दाख में जो हमारे नागरिक हैं उन्होंने बहुत सुदूर पहाड़ के एक क्षेत्र में बहुत सुंदर तिरंगा का स्वरूप बना के उसको सेलिब्रेट किया, उसको अपलोड किया। दक्षिण में जो हमारे नागरिक हैं बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हर घर तिरंगा कैंपेन को आगे बढ़ाया। फिर अभी पोंगल का उत्सव हुआ, अभी नवरोज आ रहा है, तो उसके साथ भी जो हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं उनके साथ भी हर घर तिरंगा की रंगोलियां बन रही हैं और उनको साथ में जोड़ के हमारे नागरिक हर घर तिरंगा कैंपेन को भी साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो विभिन्न तरीके से, विभिन्न प्रकार से जो भारत के नागरिक हैं वो हर घर तिरंगा कैंपेन में सम्मिलित हो रहे हैं और बहुत सारी प्रेरणादायी तस्वीरें अपलोड हो रही हैं, स्टोरीज अपलोड हो रही हैं और बहुत उत्साह से हमारे नागरिक भाग ले रहे हैं। मेरा आह्वान है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व हमें प्रदान किया इस कैंपेन में सम्मिलित होने के लिए, उसमें सभी भारत के नागरिक बहुत अच्छे से और बढ़ चढ़कर और सभी वर्ग के लोग इसमें इसी तरह से और जोर शोर से सम्मिलित होंगे और इस बार हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा भागीदारी इस साल के हर घर तिरंगा कैंपेन में हुई है।
1: इस अभियान में युवा वर्ग को साथ जोड़ने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, संख्या में शामिल करने के लिए, खासकर स्कूल और कॉलेजेस के लिए क्या सरकार ने कोई खास कदम उठाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग इसमें शामिल हो, बच्चे शामिल हों?
0: मुझे जो लगता है कि सरकार को बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी इस साल। ये इतना अच्छा युवा वर्ग का इसमें उत्साह है कि जगह जगह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सार्वजनिक स्थानों में युवा

0: श्रोता ही इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा रिस्पांस युवा वर्ग का हर घर तिरंगा कैंपेन में है, तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा कोई आउटवर्ड प्रयास करने की आवश्यकता है। एक बार आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उस आह्वान का ही इम्पैक्ट है कि युवा वर्ग बहुत अच्छे से इस कैंपेन में सम्मिलित हो रहा है।
1: हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारा ध्येय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक ध्येय, एक मिशन दिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनना है। ऐसे समय में हम जब भारत की स्वतंत्रता दिवस के हम जश्न मना रहे हैं, कितना जरूरी है कि हम अपना अतीत ना भूलें, हम अपने स्वतंत्रता संग्राम, उस बंटवारे के दर्द को और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जो एक राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होती है लोगों के अंदर, इस भावना को साथ लेकर आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर आगे बढ़ें।
0: ये जितना भी पूरा कैंपेन है और जो भावना जागृत हो रही है, उसका जो नेचुरल जो रिजल्ट है वो यही है कि हमें आत्मविश्वास प्राप्त हो रहा है, हमें आत्मविश्वास और मिलेगा, हमें जो देशभक्ति की भावना है, जो एकत्व की भावना है, एकता की भावना है, इकट्ठे मिलके आगे बढ़ने की भावना है, वो इससे सुदृढ़ हो रही है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब हम अपने देश में और अपने आप में हम आत्मविश्वासी होते हैं, तो हमें जो आत्मनिर्भरता है उसकी भावना भी स्वयं ही आती है। क्योंकि कई बार ये अगर भावना हो कि हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस होता है, हमारे यहाँ जो है वो विदेश में कोई चीज है उससे इन्फीरियर क्वालिटी का है या दोयम दर्जे का है, जब ये भावना आती है तो आत्मनिर्भरता की भावना कमजोर होती है। पर जब हमें आत्मविश्वास आता है और अपने देश पे गर्व होता है, अपने देशवासियों पे गर्व होता है और अपने देश में बनने वाले उत्पादों पे गर्व होता है, तो आत्मनिर्भरता अपने आप आती है। उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। तो आपकी बात सही है कि जो ये कैंपेन है, वो चाहे हम वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हों या हम हर घर तिरंगा की कैंपेन में हिस्सा ले रहे हों, अपनी सेल्फी अपलोड कर रहे हों तिरंगे के साथ, या वंदे मातरम को गा के हम अपलोड कर रहे हों, इन सभी जो एक्टिविटीज हैं उनका रिजल्ट यही है कि हम भारत के निर्माण के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करने की भावना से काम कर रहे हैं। और इस भावना से अगर हम काम करते हैं तो आत्मनिर्भरता, भारत का विकास और इसके साथ विकसित भारत बनने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उसकी पूर्ति, ये सभी उद्देश्य हमारे सफलता की ओर बढ़ते हैं।
1: हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़े ये तीनों कार्यक्रम, चाहे वो हर घर तिरंगा अभियान हो, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का समारोह हो या फिर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हो, भारत के गौरवशाली अतीत को एकजुट, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से जीवंत भविष्य की उसकी आकांक्षाओं से कैसे जोड़ते हैं ये तीनों?
0: देखिए, जो ये तीन चीजें इकट्ठी हुई हैं, तिरंगा हमारे देश का सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, वंदे मातरम हमारा न केवल भविष्य है बल्कि वो हमारे अतीत की धरोहर भी है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज भी है। और जो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे है, जो हम विभाजन की विभीषिका को याद करते हैं, वो हम अपने आप को सजग करते हैं, वो अपने आप को सावधान करते हैं कि जो गलती पूर्व में हुई, जो गलती उस समय हुई, वो गलती दोबारा ना हो और समाज का ऐसा निर्माण हो कि उसको दोबारा कोई ना तोड़ पाए, उस भावना को वो सुदृढ़ करती हैं। तीनों ही जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और तीनों ही जो हर घर तिरंगा के इस बार के उत्सव में सम्मिलित हैं, वो तीनों ही एक ऐसी दिशा हमारे नागरिकों को देती हैं जो देश की एकता, अखंडता, देश का सम्मान और देश के स्वाभिमान के लिए काम करने के लिए सभी को प्रेरित भी करती हैं।
1: विवेक जी, आखिरी सवाल, भारत का युवा जो भारत का भविष्य है और जो विकसित भारत के इस मिशन को पाने में जिनकी बहुत अहम भूमिका होगी, इस अवसर पर, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, क्या आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही संदेश दिया है उसी को दोहराना चाहूंगा कि जो भारत के युवा हैं वो अपने आप को ये ना माने कि उनको सिर्फ आज का भारत देखना है, वो भारत के भविष्य के निर्माता हैं और भारत के भविष्य की धरोहर के सुरक्षा रखने के भी उनका कर्तव्य है। वो अपनी संस्कृति से सीख लें, जो विरासत में हमने पाया है, जो हमारी बहुत ही समृद्ध विरासत है, उसको अपना के अपने आगे बढ़ने का रास्ता अपनाएं और ऐसा रास्ता अपनाएं जिसमें जो भारत को विश्व के शीर्ष पे हम ले जा सकें उसकी तरफ वो अपना कंट्रीब्यूशन करें। और मैं ये भी मानता हूं कि जो भी कार्य हम अपने लिए चुन लेते हैं उसी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करके

0: आप समाज में अग्रणी बन सकते हैं। कोई भी एक प्रोफेशन या कोई भी एक कार्य किसी दूसरे प्रोफेशन या दूसरे कार्य से बेहतर नहीं होता। तो जिसको आपने चयन किया, अगर आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने हेल्थ के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने किसी और प्रोफेशन को आपने अपना प्रोफेशन बनाया, तो किसी भी प्रोफेशन में, आर्ट में, कल्चर में, कॉमर्स में, साइंस में, या जो भी प्रोफेशन आप चुनते हैं, हर एक प्रोफेशन में शीर्ष पे जाने का अवसर रहता है। अगर आप मेहनत करेंगे, शीर्ष पे जाएंगे, तो आपको रिकग्निशन मिलेगा। कोई एक प्रोफेशन या एक क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र से बेहतर नहीं है। हर एक क्षेत्र को अपना के, किसी भी क्षेत्र को जो आपने चुन लिया, उसमें आप मेहनत करेंगे तो शीर्ष पे पहुंच सकते हैं और देश की तरक्की और देश को विकसित बनाने में आप योगदान कर सकते हैं। इसलिए पूरे मन से देश के सम्मान को अपने मन में रखते हुए, देशभक्ति को अपने मन में रखते हुए, तिरंगे के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए आप मेहनत करें, जो आपके विचार हैं उसमें आप सकारात्मकता रखें और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करते रहें और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करते रहें।
1: विवेक जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
3: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रवर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ई रुपए का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल का उद्देश्य गरीबों के लिए सरकारी लाभार्थी योजनाओं से बिचौलियों को हटाना है।

0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने वस्त्र क्षेत्र के विकास में नई गति लाने के तरीकों के साथ साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत विकास, निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को जहरीली गैस से एक व्यक्ति की कथित मौत और अन्य के घायल होने की घटना पर नोटिस जारी किया है। घटना का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक ग्राम रक्षा गार्ड की एक अन्य गार्ड के साथ झड़प में मौत हो गई और दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जुलाई महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुद्रा स्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा दरों में कमी आना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आज संध्या 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

ब्रज साहित्यिक। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा काव्य पाठ, आधारित होगा देशभक्ति पर। कवि होंगे अनिल कुमार शर्मा। संध्या वंदन, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:30 पर। श्याम सुहानी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे संध्या 7:31 पर।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग आप सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर।

नौटंकी। आजाद हिंद, लेखक होंगे भगवती प्रसाद वर्मा, प्रस्तुति मोहित कुमार की होगी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 10:30 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं वाहिद हुसैन का शहनाई वादन।

रात्रि 11 बजे होंगे हिंदी समाचार 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

0: ब्रज साहित्यिक। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं काव्य पाठ, आधारित है देशभक्ति पर। कवि हैं अनिल कुमार शर्मा।
1: आओ आजादी को अमृत काल चल लो है, या अमृत काल की बेला में बिन शहीदन को कछु शब्द सुमन समर्पित कर रहा हूं। आशा करूं कि तुम्हें अच्छे लगेंगे।

भिड़ गए उन्हीं की जय को गान कर, जो प्राण प्रण ते भिड़ गए उन्हीं की जय को गान कर, कि धारुले खड़क खड़क।

को गान कर हूं स्थिति निकट बिकट न लख्य ते भटक भटक की त्राही त्राही कर उठे देख कर की अरिकटक की त्राही त्राही कर उठे की देख कर की अरिकटक।

है गुमान कर, भक्त के बितान पर कमान तान तान कर, जो प्राण प्रण ते भिड़ गए उन्हीं की जय को गान कर, जो प्राण प्रण ते भिड़ गए उन्हीं की जय को गान कर। और भैया यही श्रृंखला में एक और रचना रखवे को प्रयास करूं, उन बीरन को या रचना के माध्यम से नमन करवे को प्रयास करूं कि नमन

चमन चमन चमन चमन की काल के उभाल पे उनकी हैं निशानियां, की काल के उभाल पे उनकी हैं निशानियां, मर के जो अमिट भई ऐसी हैं कहानियां, मिट के जो अमिट भई ऐसी हैं कहानियां, बिगड़ के सिदास्ता कर गए गमन गमन नमन नमन।

चमन चमन चमन चमन की फलक तलक दिखे झलक उन्हीं के शौर्य गान की, फलक तलक दिपे झलक उन्हीं के शौर्य गान की, छलक छलक गए पलक सुनी जो गाथा मान की, छलक छलक गए पलक सुनी जो गाथा मान की। मर के भी जो कर गए, मर के ऊं जो कर गए दुश्वारियां, समन समन नमन नमन।

0: करजदार है चमन को हर सुमन सुमन नमन नमन नमन नमन नमन नमन उन्हें नमन। खुशबू जो लुटा गए खुशबू जो लुटा गए चमन चमन चमन चमन चमन चमन चमन चमन।
1: और भैया यही श्रृंखला में इन वीरन को नमन करते हुए एक रचना है
0: कि जय जय जय जय हिंदुस्तान तेरी सगते ऊंची शान। जय जय जय जय हिंदुस्तान तेरी सगते ऊंची शान। तेरी सगते ऊंची शान तेरो सगते ऊंचो नाम तो पे ज्वान भय कुर्बान। जय जय जय जय हिंदुस्तान किसन सत्ता मन में टकराई अंग्रेजन ते रानी। सन सत्ता मन में टकराई अंग्रेजन ते रानी और गोली खाए के जफर कुमर दो लिख गए अमिट कहानी। और तात्या और मंगल ने होमी तात्या और मंगल ने होमी तेरी खातिर जान। जय जय जय

कर भाई कि तेरी खातिर फांसी चढ़ गए तीनों चपे कर भाई, और वासुदेव फड़के ने भैया अड़के लड़ी लड़ाई, और रामू सिंह कूका ने राख्यो, और रामू सिंह कूका ने राख्यो पंजाब इनको मान, जय जय जय जय हिंदुस्तान, तेरी सगते ऊंची शान, तेरी सगते ऊंची शान, तो पे जवान भय कुर्बान, कि भील कोल पासी बनवासी सगने जान गंवाई, कि भील कोल पासी बनवासी सगने जान गंवाई, और बिरसा

करूं बड़ाई कि गोरिन की छाती में धस गे, कि गोरिन की छाती में धस गे तिलका मांझी के बाण, जय जय जय जय हिंदुस्तान, तेरी सगते ऊंची शान, तेरी सगते ऊंची शान, तोपे जवान भये कुर्बान, कि प्रफुल्ल चाकी और आजाद ने खुद ही गोली खाई। और भैया एक बात बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद ही एकमात्र ऐसे शहीद ना है जिन्हें अपने आप में गोली मारी हुए, एक दूसरा और नाम है प्रफुल्ल चाकी, उन्हें अपने आप खुद ही अपनी पिस्तौल से गोली मार के अपनो प्राणांत कियो। तो ऐसे वीर के सम्मान में पढ़ूं कि प्रफुल्ल चाकी और आजाद ने खुद ही गोली खाई, खुद ही राम और हेमू कलानी जंगी अमर सिपाही, और सूर सेन ने मरते दम तक, सूर सेन ने मरते दम तक नहीं छोड़ो मैदान, जय जय जय जय हिंदुस्तान, तेरी सगते ऊंची शान, तेरी सगते ऊंची शान, तोपे जवान भये कुर्बान, कि ऊधम और धींगरा ने जाके बिल्ला तुम्हें मारे, कि ऊधम और धींगरा ने जाके बिल्ला तुम्हें मारे, और दत्त सवरकर कोल्हू पेरे कारे पानी भारे, और राजगुरु सुखदेव भगत को, राजगुरु सुखदेव भगत को जाहिर नाम जहान, जय जय जय जय

जय जय हिंदुस्तान तेरो सगते ऊंचो नाम। और यही श्रृंखला में भैया आओ, पुरुषई पुरुषन ने या देश के काजे बलिदान ना दियो, महिलाओं पीछे ना रही। ऐसी केव महिलाएं, केव कहा अनगिनत महिलाएं, बिन्ने अपनो बहुत बड़ो योगदान दियो या देश की आजादी में, और आजादी तो पहले या देश के बनावे में, और विदेशी आक्रांतान को सामना करवे के बारे में। तो बिन में ते कछु वीरांगनान को बारे में कछु कहवे को प्रयास कर रहा हूँ, सुनो। कि ये भारत माँ की बेटी ना बेटन ते बिल्कुल कम, ये भारत माँ की बेटी ना बेटन ते बिल्कुल कम, सगरे जग में गढ़े परे इनकी गाथन के खम, ये भारत माँ की बेटी ना बेटन ते बिल्कुल कम। लोपा मुद्रा मैत्रेयी घोषा अदिति और अपाला, ऋचाकार बन के वेदन की नाम अमर कर डाला। गार्गी की विद्वता ने तोरो पुरुष जाति को दंभ, ये भारत माँ की बेटी ना बेटन ते बिल्कुल कम।

अमिट कहानी। काकातियो रुद्रम्माऊं कूदी युद्ध में धम्म, ये भारत माँ की बेटी ना बेटन ते बिल्कुल कम। सगरे जग में गढ़े परे इनकी गाथन के खम, कि वीर मराठा ताराबाई मुगलन ते टकरा।

पढ़ाई कि तूर कुमारी चेनम्मा में साहस भरो अदम। ये भारत माँ की बेटी ना बेटन ते बिल्कुल कम। कि दुर्गावती लक्ष्मी बाई भाई जग जाहिर है नामा। और भारतीय क्रांति की जननी कहा वे मैडम भी का कामा। जनसेवा में कोई न भैया, जनसेवा में कोई न भैया, फुले सवित्री सम। ये भारत माँ की बेटी ना बेटन ते बिल्कुल कम। सगरे जग में गढ़े परे इनकी गाथन के खम। कनक लता संग लड़ी हाजरा भोगेश्वरी भई बागी।

गोली दागी, अंग्रेजन के क्लब में फोरियो, अंग्रेजन के क्लब में फोरियो, प्रीति लता ने बम, ये भारत माँ की बेटी ना बेटन ते बिल्कुल कम, और सगरे जग में गढ़े परे इनकी गाथन के खम, कि पीटी उषा मल्लेश्वरी और मेरी कौम खिलाड़ी, कि पीटी उषा मल्लेश्वरी और मेरी कौम खिलाड़ी, पाल बछेंद्री एवरेस्ट पे विजय पता का गाड़ी, असमय निधन ते इंदिरा चावला, कि असमय निधन ते इंदिरा चावला, आंखें कर गई नम, ये भारत माँ की बेटी ना बेटन ते बिल्कुल कम, और सगरे जग में गढ़े परे।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुनी भक्ति रचना चंदनदास की आवाज में, और इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नाल सा। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: This is Akashvani. On the eve of Independence Day, we now bring you Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया।

एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलबत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए

अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में सम्पन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं।

महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्ष की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक

एक ऑपरेशन भारतीय सेना की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को यह कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के, विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा तो अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदी पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी कादोई, देश मंटे मनुष्यलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव गांव में, नगर नगर में, भारत के घर घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए, देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ आवर कंट्री विल विटनेस द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द 80th ईयर सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। ऑल इंडियंस लिविंग इन द कंट्री एंड अब्रॉड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ ग्रेट जॉय। आवर ट्राइकलर इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम। वी अनफर्ल इट विथ इमेंस प्राइड। ऑन द 15th ऑफ ऑगस्ट 1947 भारत माता वॉज लिबरेटेड फ्रॉम द शैकल्स ऑफ सबजुगेशन। Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sports persons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers, and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all playing an important role in the nation's progress. Numerous citizens engage

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रिक

0: इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: अभी आप विमल राजस्थानी की देशभक्तिपूर्ण रचना सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें पीएमसूर्यघर.gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए

0: शीघ्र पंजीकरण कराएं।
1: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
0: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लाल किले पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया जाएगा पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल। कहा, विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का ले संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सकें और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक हम विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे।
1: स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक से अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। उन्होंने कहा कि विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी गई है।
1: पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है, विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, साथ ही नए रोजगारों का सृजन हो रहा है और निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड, कमिटेड और स्किल्ड हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए

0: अब स्वर्ग के द्वार खलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि खेलकूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्रों के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित मौन पदयात्रा सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभाजन त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 1947 में देश के विभाजन की त्रासदी को मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत भारत तभी बनेगा जब समाज एक पहचान के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान केवल एक भारतीय नागरिक की होनी चाहिए।
3: हमारी व्यक्तिगत पहचान हमारे नातेदारी, रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी एक पहचान होनी चाहिए और वह एक भारतीय के रूप में, भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में। यह हमारा एक सामूहिक दायित्व बनता है कि हम सब अपनी उस पहचान को बनाएं, उस पहचान के साथ हम आगे बढ़ें, अन्यथा आपस में हमारा ये विभाजन यह उन तत्वों को जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं उनको मजबूती प्रदान कर।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के पुण्य स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का बदला हुआ अयोध्या धाम हमें फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता है। श्री योगी ने चढ़ावा मामले पर कहा कि SIT की जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है।
3: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, SIT बनी, SIT के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, दूध का दूध पानी का पानी ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए।
1: केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें 40 सवाल हैं। इनमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित सवाल शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हिंदुत्व विचारक VD सावरकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी थी। राजधानी

लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित, कहा वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लाल किले पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया जाएगा पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल, कहा विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का लें संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम एक ही फिल्म से कुछ ही पलों में।

रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परदेश के कुछ गीत। इस क्रम में सुनते हैं ये पहला गीत।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे हैं फिल्म परदेश के कुछ गीत। अभी आपने जो गीत सुना उसमें स्वर कुमार सानू का था।

ये थे फिल्म परदेश के कुछ गीत। इस फिल्म के सभी गीतों को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत नदीम श्रवण का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्श के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग

0: का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
1: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर

0: सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
2: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
3: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। आईएमडी ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: That's all in the news at 9. Good night.
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। निजी प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग।

नवरंग कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम पढ़ रहे हैं कुछ पत्र, और इसी क्रम में ये पहला पत्र हमें मिला है गांव गोपी के नगरिया से। मिठनलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा। अगला पत्र गांव नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, डुगू और इनके समस्त परिवारीजन। अगली फरमाइश के साथ ये पत्र मिला है गांव नौधरा से कोमल मास्टर, जसोदा, लाखन, सूरज, रोहित, चंचल, अंजना और इनके मम्मी पापा। सुनते हैं इन सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में फिल्म टशन से। इस गीत को लिखा था कौसुर मुनीर ने, संगीत निर्देशन विशाल शेखर का। कार्यक्रम नवरंग में हमें अगला जो पत्र प्राप्त हुआ है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। एक और पत्र कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज का। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से संदेश मिला है अजीत, अमित, शिवांश, शिवांगी, चुन्ना और इनके मम्मी पापा का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये गीत कैरलिसा मोइंट्रो और शिल्पा राव की आवाज़ों में फिल्म पठान से। कार्यक्रम नवरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, आपने सुना ये गीत राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में फ़िल्म पाप से। इस गीत को लिखा अमजद इस्लाम ने और इसमें संगीत निर्देशन शशि का था। और इस गीत को सुनना चाहता भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक और जावेंद्र कुमार वर्मा ने।

इस गीत को सुनना चाहा है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन ने। श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी बेबी वियोमिनी, पुरंजय कविता और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

गीत निर्देशन हिमेश जैसमिया का, फिल्म का नाम मैंने प्यार क्यों किया। और इस गीत को सुनना चाहा था मथुरा से शिल्पा विशाल रागिनी और इनके समस्त परिवारी जनों ने। कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली है गांव सुरीर से गोपाल, दिनेश, रामानुज और विष्णु की। इन्हीं के साथ वृंदावन से ये संदेश हमें मिला है। हरे कृष्णा।

ये संदेश हमें मिला है हरे कृष्णा ऑर्चिड से। लिखने वाले हैं देशबंधु बद्री प्रसाद ओमवती और इनके समस्त मित्रगण। सुन लेते हैं इन सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह की आवाज में फिल्म कहानी से। गीत रचना अन्विता दत्त की थी, संगीत विशाल शेखर का। कार्यक्रम नवरंग में आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे नेहा कक्कड़ की आवाज में, फिल्म का नाम KGF चैप्टर 1। इस गीत को लिखा रश्मि विराग ने, संगीत तनिष्क बागची का था, फिल्म का नाम KGF चैप्टर 1। गीत को सुनना चाहता गोवर्धन से राहुल, अमित, रोहित, आकाश, मोहित, अंकित, नेहा पूजा, नेहा प्रिया। और इसी के साथ एक और ये पत्र हमें जो प्राप्त हुआ है वो हमें मिला है बरसाना से स्नेहा, अंजलि और काजल का। कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको ये अगला गीत।

श्रोताओ, ये गीत अभी आपने सुना सईम भट्ट की आवाज में फिल्म क्रिएचर 3D से, और इस गीत को सुनना चाहता सदर बाजार मथुरा से पूजा प्रिया नेहा ज्योति आरती शिवानी ने, और इसी गीत

अभी तक आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं नौटंकी आजाद हिंद। लेखक हैं भगवती प्रसाद वर्मा, प्रस्तुति मोहित कुमार की।

0: हाँ हाँ बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है। तो आपको आदेश हो तो भगत सिंह की तरह बमबारी करूं?
1: नहीं नहीं,
0: ओके से

दिली मैं तेरे मन की सभी के

0: हम तुम नारे लगाएंगे और गाना बजाना करेंगे।
1: अब भारत हो आजाद, सुनो जी सब हरे।

0: मैं पूछो भैया सोच की कहानी क्या बताऊं?
1: कहो मैं भी तुम्हारे साथ जूंगा, चिंता मत करो।
0: मैं चिंता ये मैं

निकार कर उठाया धनुष पाया बरदार रे हाँ कर उठाया धनुष पाया बरदार रे मैगी कर में दुधारी लहू धार कर या तो पाऊं विजय या हो बलिदान रे।

झूला और बारूद तमंचा भूषण उन पर रहे चला। आजाद हिंद की फौज लड़ाकू गोरे भागे पूछ दबाए, हाहाकार मचो गोरे में मन में गए सना तो खाए।

पड़ेगी लाए, इतने बढ़कर शक्ति मारो इन पर दीजिए बम गिराए। ओ बड़े लड़ाकू भारतवासी हो, सबके मन में रही समाए, जब ही जीत हमारी होगी सबने नीनी सलाह बनाए, सबने नीनी सलाह बनाए, जब ही जीत हमारी होगी।

0: جاي هند انقلاب انقلاب ولا بھارت ماتا کی
1: अभी तक आप सुन रहे थे नौटंकी आजाद हिंद। लेखक थे भगवती प्रसाद वर्मा, प्रस्तुति मोहित कुमार की थी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वाहिद हुसैन का शहनाई वादन। निबद्ध है राग बागेश्री में। ताल विलंबित एक ताल, द्वित तीन ताल,

शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज आपने सुना वाहिद हुसैन का शहनाई वादन निबद्धता राग बागेश्री में ताल विलंबित एक ताल द्रुत तीन ताल तबले पे संगत गुलाम अहमद की हारमोनियम पर थे परवेज। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200

0: जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाडा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया, जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। यह सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों के यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। छात्रों ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day this evening, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
1: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
2: President Draupadi Murmu highlighted that making the country a Naxal-free is a major achievement as for decades, Naxalism posed a serious challenge.